मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 13 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी

0: खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशगान से।

कार्यक्रम वंदना में अब आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में श्री हनुमान चालीसा।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब प्रस्तुत है पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आपने सुना कार्यक्रम वंदना में पंडित कुमार गंधर्व को। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

शारदा सिन्हा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए चिंतन में महात्मा गांधी एक यात्रा का भाग बात।

0: गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जहां गांधी जी और रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम नहीं पहुंचा हो। दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्रों में भारत गांधी और रविंद्र के देश के नाम से जाना जाता है। एक ओर यदि रविंद्रनाथ विश्व में शांति के विजेता थे तो दूसरी ओर गांधी जी समस्त संसार में शांति दूत के नाम से प्रसिद्ध रहे। ऐसे समय में जब दुनिया मानवता को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर बेतहाशा दौड़ी जा रही थी, रविंद्रनाथ ने मनुष्य मनुष्य को प्यार करने का सांस्कृतिक संदेश सुनाया। और जब दुनिया के बड़े बड़े राज्य एटम बम की महाभयानक लड़ाई में व्यस्त थे, तब गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और शांति का अभूतपूर्व मार्ग दिखाया। गांधी जी और रविंद्रनाथ विश्व की महान विभूतियां हैं। दोनों ने संसार के विभिन्न देशों का दौरा किया और युगों से शोषित और पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने में योगदान दिया। मानवता के संदेश दाता के रूप में दोनों एक साथ और एक समान सर्वत्र अमर रहेंगे। एक बार गांधी जी स्विट्जरलैंड में विश्व के महान साहित्यकार रोमा रोला के घर ठहरे थे। संयोगवश वे उसी कमरे में ठहराए गए जो रोला का निजी कमरा था। श्री महादेव भाई ने वहां का वर्णन करते हुए लिखा है, छोटा सा कमरा चारों ओर से पुस्तकों से भरा था। उसकी दीवारों का जो भाग पुस्तकों की अलमारियों से बचा हुआ था, वहां रोला को जिन लोगों के प्रति श्रद्धा है ऐसे व्यक्तियों के सिरों की शिल्पकृतियां रखी हुई थी। उनमें गेटे, बीथोवन, टॉलस्टॉय, गोरकी, आइंस्टीन और भारत के हमारे प्यारे महान पुरुष गांधी जी और रविंद्रनाथ। ठीक यही बात रविंद्रनाथ के संबंध में भी है। रवि बाबू जब चीन गए तो चीनी जनता की ओर से उन्हें जो उपाधि दी गई वो बहुत ही सुंदर है। उसमें उन्हें कड़क कर उदित होने वाला सूर्य कहा गया है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए टैगोर ने कहा था, आज शक्ति के साथ शक्ति का युद्ध चल रहा है। यह पशु के साथ पशु का युद्ध है, मनुष्य के साथ मनुष्य का नहीं। मनुष्य के प्रति विश्वास खो देना पाप है, अतः उस विश्वास की मैं अंतिम समय तक रक्षा करूंगा। गांधी जी और रविंद्रनाथ में अटूट संबंध था। बात सन 36 की है। गांधी जी दिल्ली में थे और गुरुदेव भी अपने आश्रम वासियों के एक दल के साथ अपने चांडालिका नामक नाटक का अभिनय करने दिल्ली आए हुए थे। वे वृद्ध थे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। गांधी जी के लिए असह्य हो गया कि गुरुदेव को अपनी संस्था के लिए धन संग्रह के निमित्त रंगमंच पर उतरना पड़े, इसलिए उन्होंने श्री घनश्याम दास से इसकी चर्चा की, जिसके बाद फौरन एक चेक के साथ यह पत्र उनकी सेवा में भेजा गया। पूज्य गुरुदेव, इसके साथ 60,000 का एक चेक जा रहा है। हमें मालूम हुआ कि शांति निकेतन के खर्च में इतनी कमी पड़ गई और उसकी पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमने यह सुना तो हम शर्मिंदा हुए। आप केवल भारतवर्ष के ही बड़े से बड़े कवि नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कवि हैं। आपके काव्य प्राचीन ऋषियों की ऋचाओं का स्मरण कराते हैं। आपने अपनी अद्वितीय प्रतिभा द्वारा हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और हम यह अनुभव करते हैं कि जिन्हें ईश्वर ने कृपा पूर्वक धन दिया है उनका कर्तव्य है कि वे आपको अपनी संस्था चलाने के लिए आवश्यक धन संग्रह करने के दायित्व से मुक्त कर दें। यह रकम इस दिशा में हमारा एक नम्र प्रयत्न है। जब यह पत्र लिखकर स्वर्गीय महादेव भाई देसाई गुरुदेव के पास गए तो उन्हें अपार हर्ष हुआ और उन्होंने अपनी यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्होंने गांधी जी को एक वाक्य का पत्र लिखा, आपने मेरी इतनी मदद की और अपने जिस स्वधर्म से मैं विचलित हो गया था उसका मुझे स्मरण कराया। इस संबंध में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं।

चिंतन में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी एक यात्रा का भाग 12वां। आलेख और वाचन था सुमित गौतम का।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का अंत।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया। अनु ने विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा। पशुओं के नवजात बछड़ों की देखभाल जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एसपी सिंह।
1: किसान भाइयों, आज सबसे बड़ी समस्या जो पशुपालन में आ रही है वो देखने में आ रहा है कि जो हमारा गिरध अंचल है, चंबल संभाग है, यहाँ पर पशुपालक जो है भैंस पालन का बड़े पैमाने पर पालन करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में भैंस पालन करते हैं। परंतु देखने में आ रहा है कि भैंस तो हमारा पशुपालक अच्छी रखता है, परंतु जो भैंस के बच्चे हैं उन बच्चों को नहीं बचा पाता। इनके पीछे सबसे बड़ी जो प्रमुख वजह है वो किसान भाई, उसका प्रबंधन सबसे बड़ी वजह है। उस प्रबंधन को यदि किसान पशुपालक भाई सुधार लें तो अपने नवजात लवारों को बचा सकते हैं। देखने में आ रहा है के लिए जो गिरध अंचल है, हर जिले में जो है, हर जिले का आंकड़ा निकालें तो 1 से लेकर 1.5 अरब तक के भैंस के लवारे हर साल मर जाते हैं। इनको बचाने के लिए साथ बहुत सख्त जरूरत है, और इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को 2-3 विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ है, जो भैंस के लवारे हैं, बच्चे हैं, वो पैदा होने के बाद 6 से लेकर 7 महीने के भीतर मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन्हें बचाने के लिए मोटे मोटे तौर पर 2-3 विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज़, भैंस पर बच्चा पैदा होने के बाद पशुपालक भाइयों को सुझाव है कि पैदा होने के बाद बच्चे के 1 घंटे के भीतर बच्चे के वजन का 1/10 भाग उसे खीस, पेप्सी या कीला जरूर पिलाएं। अक्सर कर क्या होता है कि हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं के जो दूध पैदा मिलता है, जो कीला मिलता है, उस कीले को 3 दिन तक पिलाते नहीं हैं। उससे क्या है, बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती और उससे रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती। तो पैदा होने के बाद 1 घंटे के भीतर बच्चे के वजन का 1/10 भाग कीला, पेप्सी या खीस जरूर पिलाएं। इससे क्या होगा, ये दस्तावर होता है, पेट की जो अंतड़ियों में गंदगी भरी पड़ी है उस गंदगी को साफ करेगा और बच्चों में रोगों से लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगा। दूसरा काम जिसकी वजह से जो नवजात लवारे सबसे ज़्यादा मर जाते हैं वो उसके नार पक जाने की वजह से, अक्सर बच्चों के नाल पक जाते हैं। तो ये या तो हमारे पशुपालक भाई बच्चों के नाल को काटते नहीं हैं, काटते हैं तो कोई भी खुरपी ऐसी पड़ी है उससे के काट देते हैं जिससे वो नार पक जाता है, और नाभि का संबंध पेट से रहता है, पाचन तंत्र से रहता है। इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद साफ सफाई कर लें, और साफ सफाई करने के बाद ऊपर से 2-3 अंगुल छोड़ते हुए 1 धागे से नाल को बांध दें, और जहाँ बांधा है वहाँ से 1 अंगुल और छोड़ें और 1 ब्लेड से, नए ब्लेड से लेकर उसको नाल को काट दें। और काटने के बाद ध्यान रखें कि भूल के भी उस नाल पर सरसों का तेल मत चुपड़िए। सरसों का तेल चुपड़ोगे तो बच्चा नीचे बैठेगा, मिट्टी पकड़ेगा, सरसों के तेल की खुशबू की वजह से दूसरी भैंस या बच्चा उसको चूसेगा, चबाएगा तो वो नार पक जाएगा। इसलिए उस पर सरसों का तेल न चुपड़ के आप जो टिंचर आयोडीन है ये 5 से 6 दिन तक आप चुपड़ेंगे तो नार पकेगा नहीं और नार सूख जाएगा, और जो धागा बांधा है धागे की वजह से कोई भी गंदगी, कोई भी कीटाणु, कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर नाभि के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों को बचाने के लिए वो है पेट के कीड़े। कोई भी बच्चा है, गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं, इनके पेट में कीड़े, हमारे पशुपालकों की ये गलत धारणा है कि पेप्सी पिलाने से या कीला पिलाने से पड़ जाते। कीला पिलाने से कभी कीड़े नहीं पड़ते, बल्कि गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, इनके पेट में कीड़े माँ के गर्भ से आते हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में नाल के माध्यम से भोजन लेता है, तो इस गर्भस्थ अवस्था के दौरान ही इन कीड़ों के अंडे, इन कीड़ों के लार्वा उस गर्भस्थ शिशु के पेट में प्रवेश कर जाते हैं, खासकर गाय और भैंस के बच्चों में। तो ये गाय भैंस के बच्चे जो हैं ये पेट के कीड़े माँ के गर्भ से लेकर पैदा होते हैं, इसलिए इनका एक जीवन चक्र, लाइफ साइकिल चल रहा है। जब तक उस जीवन चक्र को आप नहीं तोड़ोगे पेट के कीड़े नहीं खत्म होंगे। ये कीड़े आंतों में, फेफड़ों में, किडनी में चुपके रहते हैं, इन लवारों के पशुओं का खून चूसते रहते हैं, फलस्वरूप खून की कमी हो जाती है। 3-4 महीने बाद कीड़ों का वर्म लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कीड़ों का भार ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई दस्त होके, कोई कीचड़ आके, कोई नुमोनिया बन के बच्चे मरने लगते हैं। इसलिए पैदा होने के बाद 10वें दिन पर पहली बार, 30वें दिन पर दूसरी बार और 80वें दिन पर तीसरी बार और चौथी बार जो है 150वें दिन पर, ये 4 बार पेट के कीड़ों की दवा एल्बेंडाजोल साल्ट के नाम से उस बच्चे को उसके शरीर बाहर के अनुसार खिला पिला देंगे तो वो उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे और उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। आज हो क्या रहा है कि जो बच्चे बच भी जाते, मान लो कोई एक पढ़िया बच गई तो वो जो है 5 से 6 साल में जवान हो पाती है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा, जवान नहीं होगी, वो गर्भधारण नहीं करेगी। कोई पशु दुधारू पशु है वो भरपूर क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पाता, फलस्वरूप उसके पेट में कीड़े हैं। जब तक इन कीड़ों का आप प्रबंधन नहीं करेंगे उन पशुओं को बचा नहीं सकते, ओसर पड़ियों को समय पर जवान नहीं बना सकते और भरपूर क्षमता के अनुसार दूध उत्पादन नहीं ले सकते। तो इसलिए पशुपालकों को सिफारिश है कि हर 4 महीने के अंतर पर जो बड़े 1 साल से बड़े पशु हैं उनको पेट की कीड़ों की दवा दें और नवजात लवारे को 10, 40, 80 और 150 दिन पर 3 बार पैदा होने के बाद पेट की कीड़ों की दवा उनके शरीर भार के अनुसार जरूर खिलाते रहें।
0: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। पशुओं के नवजात बछड़ों की देखभाल जानकारी दे रहे थे डॉक्टर एस पी सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

0: मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

0: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी न बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी न करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।
1: मन्नू भाई मोटर चले पम पम पम।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती? जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
3: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ। जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
4: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
5: याद रखो हमारी बात।
6: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
5: जंगल है धरती का गहना,
6: सदा इसकी रक्षा करना।
5: होगी जो धरती पर हरियाली,
6: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
7: अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
8: हा श्रूयंताम, प्रवाचिका निधि झाहा। अथ वार्ताः। भारत निर्वाचनायोगेन महाराष्ट्र राज्यस्य प्रारूप मतदात्री सूचीषु आपत्त्यभियानस्य अन्तिमावधिः

उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के थे। आतंकवादियों का ये समूह कल दोपहर बाद कृष्णा घाटी सेक्टर के नांगी टकटे इलाके में नियंत्रण रेखा पार करने की फिराक में था, तभी उनका पांव बारूदी सुरंग पर पड़ गया और विस्फोट में 4 आतंकवादियों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जिला पुलिस बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने कल किस्ताराम थाना क्षेत्र के पालाचलमा गांव के पहाड़ी और जंगल के इलाकों में पूर्ण नियंत्रण और तलाशी अभियान चलाया। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल WBWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव साथी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:20 पर श्रोता आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे मूलचंद्र महाराज और साथ ही आप सुनेंगे इनके गाए कुछ लोकगीत। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00। 9:30 पर श्रोता साथी सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार होंगे कमल कामले, आप सुनेंगे राग गुर्जरी तोड़ी में वायलिन वादन।

सुबह 10:05 पर श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन सकेंगे। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। दिन के 11 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे और महिला कार्यक्रम में अपराह्न 1 बजे आप सुनेंगे आज आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे दोपहर 2 बजे और चित्रपट संगीत 2:30 पर।

शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5:33 पर और शाम 6:30 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00।

0: शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे किसान वाणी और रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा शाम 8:15 पर और उर्दू कार्यक्रम कहकशा आप सुनेंगे रात 9:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश श्रोता सुनेंगे रात 10 बजे और कार्यक्रम राग रजनी रात 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी। केंद्र सरकार कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करेगी। खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। और इंदौर की प्रतिभा भोसले ने देहदान, नेत्रदान और त्वचा दान कर मानव सेवा की मिसाल पेश की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्री बिसेन को राज्यपाल नियुक्त किया जाना हर्ष का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया है कि श्री बिसेन के लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव से उत्तराखंड की प्रगति को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगा जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत एक साल में ही निर्धारित लक्ष्य का लगभग 47% हासिल कर लिया गया है।
1: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लागू किए हुए अभी एक ही वर्ष हुआ है, लेकिन इस एक साल में ही अद्भुत परिणाम आए हैं और कई जिलों ने चमत्कार किया है। हमने जो लक्ष्य हमें हासिल करना है उसका 47% लगभग एक वर्ष में ही प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले आते हैं, एक साथ यहाँ कन्वर्जेंस करके लागू किया गया। और जब एक दिशा में सरकार की पूरी टीम फोकस्ड अप्रोच अपनाती है तो जिलों में परिणाम दिखाई देते हैं।
0: श्री चौहान ने कहा कि समन्वित प्रयासों से कृषि उत्पादकता, फसल सघनता और किसानों को ऋण की उपलब्धता में सुधार हो रहा है, साथ ही किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी बेहतर तरीके से पहुंच रहा है। इंदौर में आगामी 28 अक्टूबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कल कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। कॉन्क्लेव में नगरीय विकास, आधुनिक तकनीक और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसमें टियर 2 शहरों के नियोजित विकास, डेंसिफिकेशन नीतियों, ट्रांजेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और वैज्ञानिक भूमि उपयोग जैसे विषयों पर विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। खंडवा में कल शाम राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह के तहत संगीत संध्या आयोजित की गई। किशोर कुमार के पुण्य स्मृति में संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय युवा गायकों ने गीत संगीत की प्रस्तुतियां दी। दो दिवसीय समारोह के दूसरे दिन आज अभिनेता रघुवीर यादव को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इसके बाद गायक सुदेश भोसले संगीत प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक राष्ट्रगीत वंदे

0: कार्यक्रम के सामूहिक गायन के साथ प्रारंभ हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने से लेकर जनधन मुद्रा आवास जल जीवन मिशन पीएम स्वनिधि और उज्ज्वला जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं तक देश में करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
1: इंदौर निवासी 68 वर्षीय स्वर्गीय प्रतिभा अनिल भोसले का कल देहदान, नेत्रदान और त्वचादान संपन्न हुआ। उनका देहदान भोपाल के मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज में, नेत्रदान इंदौर के एमके इंटरनेशनल आई बैंक में और त्वचादान चोइथराम स्किन बैंक में किया गया। उनके इस निर्णय से चिकित्सा शिक्षा और जरूरतमंद लोगों की सहायता में योगदान मिलेगा। अंतिम विदाई के अवसर पर शासन के आदेशानुसार इंदौर पुलिस दल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। विदेशी अंशदान अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक कल नई दिल्ली में संसदीय सौध में हुई। समिति विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति विजन 2047 का मसौदा तैयार कर लिया है। ये वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण अनुकूल और संसाधन कुशल इस्पात क्षेत्र के निर्माण के लिए दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। नीति का उद्देश्य इस्पात उद्योग में भारत की स्थिति को मजबूत करते हुए देश की बढ़ती इस्पात आवश्यकताओं को पूरा करना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि दमोह जिले में दमोह कटनी और दमोह सागर फोरलेन सड़क परियोजनाओं पर 6,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल सोमवार को भोपाल में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में बताया कि बांदकपुर स्थित देव श्री जागेश्वर नाथ लोक के प्रथम चरण का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जबकि रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के विकास पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दमोह में 337 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसानों से रबी मौसम में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। शक्ति की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां बगुलामुखी मंदिर पर 14 अक्टूबर को सुविख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मंदसौर में उपज से उद्यम अभियान के तहत जिले में औषधीय फसलों के 3 क्लस्टर धमनार, सिमलिया, हीरा और नंदावता में 12 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती की जा रही है। इंदौर जिले में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत फरवरी 2027 में प्रस्तावित जनगणना के तहत जनगणना से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बैतूल में शासकीय विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित शिक्षा संजीवनी अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। भोपाल में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक अपर कलेक्टर प्रकाश नायक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

मीडियम वेव साथी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 7:20 और 30 सेकंड्स हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म सफर में। गीतकार थे इंदिवर और संगीत निर्देशन था कल्याण जी आनंद जी का। श्रोता साथियों, आज हम सभी याद कर रहे हैं महान पार्श्व गायक किशोर कुमार को उनकी पुण्यतिथि के रूप में। भारतीय सिनेमा में सबसे महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर कुमार ने अपना एक अहम स्थान बनाया था। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में ही उनका जन्म हुआ। किशोर कुमार का मूल नाम था आभास कुमार गांगुली, लेकिन फिल्मों में पदार्पण पर उन्होंने अपना नाम

किशोर कुमार रखा। आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके गीतों के जरिए। इसी कड़ी में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दूर गगन की छांव में का ये गीत, बोल शैलेंद्र के हैं,

श्रोता साथियों, आज एक ऐसी तारीख है जो भारतीय संगीत के इतिहास में एक गहरा सन्नाटा भी लाई और अमर यादें भी दी गई। यानी हिंदी सिनेमा के सबसे हरफन मौला फनकार हमारे प्यारे किशोर दा। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि वो अपने आप में संगीत की जीती जागती उन्होंने हंसाया भी और रुलाया भी, और अपनी जिंदगी को जिंदादिली से जीना भी सिखाया। योडलिंग के बादशाह, बेहतरीन अभिनेता और अद्भुत निर्देशक, ऐसा हुनर सदियों में एक बार पैदा होता है। लीजिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं उनका गाया हुआ ये संजीदा गीत फिल्म

किशोर दा के गीतों ने हर जज्बात के लिए एक सुर था। जब दिल टूटा तो उन्होंने गाया चिंगारी कोई भड़के, और जब दिल झूम उठा तो सुर सजे हाल कैसा है जनाब का। किशोर दा आज हमारे बीच शारीरिक रूप से भले ही ना हो, लेकिन अपनी जादुई आवाज के जरिए वो हर संगीत प्रेमी के दिल में धड़कते हैं। लीजिए अब सुनिए एक अलग ही सुर से सजा हुआ और भाव से सजा हुआ फिल्म दाग का ये गीत। बोल है साहिर लुधियानवी के, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके गाए कुछ गीतों की प्रस्तुति।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता साथियों, किशोरता चार बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार एक मशहूर अभिनेता रह चुके हैं। किशोरदा ने 1946 में आई फिल्म शिकारी से अभिनय की दुनिया में कदम रखा और फिल्म जिद्दी में मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने से पार्श्व गायन की शुरुआत की। वे अपनी अनूठी योडलिंग यानी गले से अलग अलग स्वर निकालने की कला और विभिन्न आवाजों में गाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो इस श्रेणी में एक रिकॉर्ड है। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और भाव से सजा हुआ फिल्म नौकर का ये गीत। बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

उनका ऑल टाइम सुपरहिट गाना 5 रुपया बारह आना असल जिंदगी की एक घटना से प्रेरित था। जब किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे तब उन पर वहां के कैंटीन वाले के 5 रुपए और 12 आने उधार थे। कैंटीन मालिक जब भी पैसे मांगता किशोरदा टेबल पर थाप बजाकर गाना गाने लगते थे। बाद में उन्होंने इसी तर्ज पर यह पूरा गाना बना दिया। लीजिए अब सुनिए गानों की ही कड़ी में सुनिए अब मेरे जीवन साथी का ये गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत एक बार फिर से राहुल देव बर्मन का।

श्रोता साथियों, फिल्म हाफ टिकट का मशहूर गाना आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया असल में किशोर कुमार और लता मंगेशकर का युगल गीत था, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन लता जी किसी कारण से नहीं आ पाई तो किशोर दा ने निर्माता का समय बचाने के लिए खुद ही पुरुष और महिला दोनों आवाजों में पूरा गाना गा दिया। ये गाना आज भी भारतीय सिनेमा में के सबसे अनोखे प्रयोगों में गिना जाता है। किशोर कुमार भले ही माया नगरी मुंबई की चकाचौंध में रहते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने पैतृक शहर खंडवा में ही बसता था। वो अक्सर कहा करते थे कि वे एक दिन सब छोड़कर खंडवा लौट जाएंगे और वहां की मशहूर दूध जलेबी खाएंगे। आज भी उनके जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि पर उनके प्रशंसक खंडवा में उनकी समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में फिल्म चलते चलते का शीर्षक गीत। गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने, उन्हें याद करते हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात,
1: साथ में फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल

0: होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि

0: योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
1: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
2: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
1: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
0: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

0: आज ओरेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu.

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं मूलचंद्र महाराज और साथी। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में ये किसान गीत।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं मूलचंद्र महाराज और साथी। अभी आपने सुना शिक्षा गीत। लीजिए अब सुनिए कबीर भजन।

मूलचंद्र महाराज और साथियों के गाए इस दादरा के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथियों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि यानी उमंग, उत्साह और आस्था का पावन पर्व भारत के सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। 9 दिनों तक चलने वाला यह एक ऐसा उत्सव जो पूरे देश को अथाह उमंग, अद्वितीय उत्साह और गहरी आध्यात्मिक चेतना से सराबोर कर देता है। श्रोता साथियों, नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान चारों ओर जो वातावरण होता है वो भक्तिमय और ऊर्जा से भर जाता है। घरों से लेकर भव्य पंडालों तक हर जगह माता के भजनों की गूंज सुनाई देती है। रंग बिरंगी रोशनी, सुगंधित धूप और मंत्रोच्चार से वातावरण जैसे शुद्ध हो जाता है। लोग 9 दिन उपवास व्रत रखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, जिससे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि शरीर का शुद्धिकरण भी होता है। श्रोता साथियों, केवल नवरात्रि इसका उत्साह पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक शानदार सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी है। गुजरात का गरबा और डांडिया रास आज पूरे देश में, विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। पारंपरिक पोशाकें जैसे धोती कुर्ता, चनिया चोली लोग पहनकर ढोल की थाप पर पूरी रात झूमते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल और मां की विशाल प्रतिमाएं कला और भक्ति का अद्भुत संगम पेश करती हैं। श्रोता साथियों, यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। जाति और वर्ग के बंधनों को तोड़कर सभी लोग एक साथ मिलकर इस उत्सव का साक्षी बनते हैं। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर की नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता को अपनाना ही जीवन का असली आनंद है। नवरात्रि आस्था, नृत्य, संगीत और खुशियों का एक ऐसा अनूठा उत्सव है जो हर दिल को उमंग से भर देता है।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। जेल विभाग में लॉ ऑफिसर के 4 पदों के लिए होने वाली परीक्षा के आवेदन 15 अक्टूबर से किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को 5 नवंबर तक का समय दिया गया है।

3,000 रुपये लेट फीस के साथ 6 से 12 नवंबर तक और 13 से 18 नवंबर तक 25,000 रुपये लेट फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इसके लिए आयु गणना 1 जनवरी 2027 से की जाएगी, जिसमें लॉ ग्रेजुएट आवेदन कर सकेंगे। अधिवक्ता के तौर पर 2 वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य है। साथ में परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR शीट पर होगी। रिजल्ट के आधार पर इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों के लिए इसमें न्यूनतम 41% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होगी। आशा है कि जनवरी में इसका परिणाम आएगा और उसके बाद मार्च में साक्षात्कार हो सकते हैं। फिलहाल 4 ही पद हैं, इसके लिए एक ही दिन में ये साक्षात्कार हो जाएंगे। और अब दूसरी खबर हम ले रहे हैं छात्रों के लिए। मध्य प्रदेश में के कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक राहत भरी खबर है ये। उच्च शिक्षा विभाग ने गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत पिछले 3 शैक्षणिक सत्रों यानी 2023-24, 24-25 और 25-26 में छूट गई पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर नवीन और नवीनीकरण आवेदन की सुविधा फिर से शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत छात्राओं को 17 बार आवेदन का अवसर दिया गया है। ये सभी 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर और 28 अक्टूबर तक इसके लिए पोर्टल खुला रहेगा। श्रोता साथियों, आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की संभावनाओं को कम करना और उनके होने पर होने वाले नुकसान को सीमित करना है। इस दिन आपदा जोखिमों को रोकना, मौजूदा जोखिमों को कम करना और समाज को अधिक लचीला बनाना इस दिन का बनाने का मुख्य उद्देश्य है। यह दिन 2015 से 2023 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक वैश्विक नीति है, जिसका उद्देश्य आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर और बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम करना है। इसके मुख्य घटक हैं शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर निवेश किया गया हर डॉलर आपदा के बाद $1 आपदा के बाद $5 तक बचा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वर्तमान में सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत आपदा जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक नीतियां चलाई जा रही हैं। भविष्य में ऐसे विकास कार्यों का निर्माण से बचना जो नए खतरे को पैदा कर सके, इसके लिए इसका खाका तैयार किया गया है। दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए यह आज ही के दिन मनाया जाता है।

श्रोता मित्रों, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रसिद्ध होटल तानसेन परिसर के पास नया गेस्ट हाउस अब निगम को सौंप दिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने भवन का प्राथमिक ढांचा तैयार कर उसे मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के हैंडओवर कर दिया है। इस समय भवन में रेनोवेशन और साज सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। पारंपरिक हेरिटेज स्थापत्य शैली में बने इस दो मंजिला भवन के भारी हिस्से में फिनिशिंग और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद इस भवन को होटल तानसेन के विस्तार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके शहर में आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को ठहरने के लिए अतिरिक्त और सर्व सुविधायुक्त लग्जरी कमरे मिल सकेंगे। श्रोता मित्रों, आज हरफन मौला पार्श्व गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर किशोर कुमार अलंकरण से अभिनेता रघुवीर यादव को सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस ग्राउंड भोपाल पर होने वाले समारोह में किशोर नाइट का आयोजन भी होगा, जिसमें गायक सुदेश भोसले ऑर्केस्ट्रा पर गीतों की प्रस्तुति देंगे। किशोर कुमार के प्रशंसक यहां महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों से उन्हें स्वरांजलि देने पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार उनकी जन्मस्थली खंडवा में पुलिस ग्राउंड में दो दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में पहले दिन ये शाम मस्ताने गीत संगीत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए हम भी याद करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस गीत के जरिए किशोर कुमार को।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और श्रोता मित्रों, अब समय कह रहा है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम दें, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को समाप्त करने की अरुणा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं कमल।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार कमल कामले का राग गुर्जरी तोड़ी में वायलन वादन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।

गुना जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 34 सितंबर को जिला पंचायत विश्राम गृह परिसर में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में 396 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया। निजी क्षेत्र की 12 कंपनियों ने साक्षात्कार लिए, जिनमें 288 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ और 240 को ऑफर लेटर दिए गए। साथ ही विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के 772 हितग्राहियों को लगभग 3,89,00,000 रुपए का हित लाभ ऑनलाइन वितरित किया गया। गुना जिला प्रशासन के राजस्व विभाग के मोबाइल कोर्ट नवाचार को नई दिल्ली में आयोजित 109वें स्कॉच समिट 2026 में फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला। इस पहल के तहत राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई करते हैं। अब तक 424 से अधिक मामलों का निराकरण किया जा चुका है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 समान किश्तों में दिए जाते हैं। इसके लिए ई KYC, आधार से बैंक खाते की लिंकिंग, DBT और भूमि संबंधी जानकारी आवश्यक है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 25 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सेवा भारती आनंदधाम वृद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक श्री पन्नालाल शाक्य और कलेक्टर ने वृद्धजनों का सम्मान किया। लगभग 250 वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। 80 को निःशुल्क औषधियां और 60 को शॉल, श्रीफल और बेडशीट भेंट की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय गुना में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 के साथ शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। गुना

0: के पॉली हाउस में उत्पादित विभिन्न रंगों के गुलाब भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र रहे। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिले में पॉली हाउस के माध्यम से गुलाब की खेती का क्षेत्र 50 एकड़ से अधिक हो चुका है। किसान एक एकड़ में लगभग 15 लाख रूपये की शुद्ध वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा पॉली हाउस निर्माण और गुलाब की खेती के लिए 28 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। युवा आपदा मित्र योजना के तहत 175 युवाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इनमें आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, CPR, प्राथमिक उपचार और प्राथमिक आपदाओं से निपटने की जानकारी दी गई। कलेक्टर के अनुसार जिले में अब तक 650 आपदा मित्र तैयार किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान शुरू किया। विद्यालयों, छात्रावासों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा दी गई। छुट्टियों में बच्चों के लिए 9 अक्टूबर को मॉपअप दिवस निर्धारित किया गया था। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए आयोजित शिविरों में जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। पशुओं को लंपी स्किन डिसीज से बचाने के लिए विकासखंड स्तर पर आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अब तक लगभग 35,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 35 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 213 करोड़ 41 लाख रूपये से अधिक की राशि अंतरित की। इनमें गुना जिले के 30,743 हितग्राहियों को कुल 1,84,45,800 रूपये मिले। इन दिनों गुना जिले में नवरात्रि उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध बीस पूजा देवी मंदिर और सिरसी स्थित मां निहाल देवी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जय स्तंभ चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
2: नसंसनी, नसंसनी, नसंसनी, नसंसनी, नौतेजना, नौतेजना, नौतेजना। नशोर दिन रात, नशोर दिन रात, नशोर दिन रात।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोता मित्रों, आज हम सभी याद कर रहे हैं महान पार्श्व गायक किशोर कुमार को उनकी पुण्यतिथि के दिन। आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों ने भी उनके कुछ गीतों को याद किया है। आज हमने उन्हीं गीतों को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता का ये गीत। किशोर कुमार भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देव बर्मन की आवाजों में।

फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत सुनना चाहा था आप सभी श्रोता साथियों ने। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी। गांव केरो, जिला तरन तरन पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। पटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव जाखोद राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा था शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ने। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार के साथ अन्य पार्श्व गायकों के गाए कुछ गीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म जॉनी मेरा राम का ये गीत। किशोर कुमार के साथ आशा भोसले ने इस गीत को गाया है। बोल है राजेंद्र कृष्ण के और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। धानोरा विटाली तहसील नांदूरा बुल्ढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क ने। मधुबनी बिहार से साबिर परवाना, साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली ने। आप सब सुनिए फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गीत। किशोर कुमार के साथ हैं इसमें आशा भोसले।

कार्यक्रम फॉर से फरमाइश का अगला गीत सुनिए आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म आक्रमण से। बोल है आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका और वाणी थांदी। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। ततरंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। और इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है बोरखेड़ा पीतरामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा और दीक्षा कुश मूरत ने। आप सब सुनिए फिल्म आक्रमण का ये गीत। किशोर कुमार के साथ इसमें है लता मंगेशकर।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में अब आपको सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म आ गले लग जा का ये गीत। इसमें किशोर कुमार के साथ हैं सुषमा श्रेष्ठ, गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, जिलोर रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर, खंडवा से इस गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है राकेश, पिंकी और दुर्गा ने, लोनी से नसीरुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाशवीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी। ग्राम नागर कोहरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाह है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, डमन ढींगिया और अपार ढींगिया, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। आप सब सुनिए किशोर कुमार के साथ सुषमा श्रेष्ठ को फिल्म आ गले लग जा में।

अभी आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गीत। किशोर कुमार के साथ थे इसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और

0: रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगता। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें व्हाट्सएप किया था काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विष्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरोशे ने। नेपाल पैलेस सागर से इस गीत को सुनना चाहा था तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। मोंगा पंजाब से जगदीश सिंह मठाडू, वीरपाल कौर मठाडू। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक विराम के बाद कार्यक्रम का अगला गीत।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है, ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म शान का गीत, किशोर कुमार के साथ इसे गाया है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने। शिवाजी चौक कटनी से इसी गीत को सुनना चाह है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा ने। पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा खोड़के, और मालियन सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और यहीं से आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन। आप सब सुनिए फिल्म शान का गीत।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अंतिम गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर सुदामा नगर रतलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी किशनगंज बिहार से इस गीत को सुनना चाहे रविंद्र मोहनदास आशा देवी राघव कुमार भानुप्रिया कीर्ति भारती मेघा राशि माधुरी किरण और अनुराग मोहन ने और चरडोंगरी पपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू जय किशन साहू श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। आप सब सुनिए फिल्म दोस्ताना का शीर्षक गीत किशोर कुमार के साथ इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार के साथ मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म दोस्ताना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण।

0: भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्तमान और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमान को आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 7% कर दिया है। अक्टूबर 2026 की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में जुलाई के अनुमानों में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 6.4% और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6.7% वृद्धि हुई है। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से अब तक कुल 4,06,338 फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं। इनमें 18 से 19 साल के 1,92,851 फॉर्म शामिल हैं। प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कल 14 अक्टूबर से वित्तीय विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। इससे लंबे समय से लंबित पदोन्नति के मामलों पर विचार का रास्ता खुलेगा। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज 29 में शुरू हो रहा है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपने अपनी चुनौती पेश करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। साथियों नमस्कार। आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में जानने से पहले चलिए सुनते हैं ये मधुर गीत, संगीत से सजा किशोर कुमार की आवाज का ये गीत, दूर गगन की छाओ में फिल्म से।

किशोर कुमार, एक ऐसी आवाज़ जिसमें हंसी भी थी, दर्द भी था और ज़िंदगी का फलसफा भी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सदाबहार गायकी, बेमिसाल अभिनय और बिंदास अंदाज की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, किशोर कुमार।

वे केवल एक गायक नहीं थे बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार थे। उनकी आवाज में ऐसी जादुई कशिश थी कि कभी वह हमें खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर करते तो कभी हमारी आंखों को नम कर जाते।

0: तले। कितना सुकून है इस गीत में, है ना? सुनकर ठहर से जाते हैं हम। तो बताइए, किशोर कुमार के बारे में आप कौन सी ऐसी बात जानते हैं जो हमें और हमारे श्रोताओं को नहीं मालूम है? तो शुरू करते हैं सिलसिला आज के कार्यक्रम का, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे का, जिसमें हम आपसे जानेंगे कि किशोर कुमार का कौन सा गीत आपको बेहद पसंद है, क्यों पसंद है, और किशोर कुमार के बारे में कोई ऐसी जानकारी जो शायद हमें और हमारे अन्य श्रोताओं को नहीं मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फोन कॉल का सिलसिला और जुड़ते हैं हमारे सबसे पहले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते
0: जी, बताइए आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी नमस्कार, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। ये कार्यक्रम किशोर कुमार जी को हम समर्पित कर रहे हैं, तो ये बताइए किशोर कुमार के बारे में आप कौन सी ऐसी बात जानते हैं या उनका कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है?
1: देखिए, जो भी हमारे पुराने गायक हैं उनके गानों में एक बात खास ये रहती है कि वो कुछ समय तक चलने वाले नहीं होते।
0: बिल्कुल सही
1: मतलब
0: कहा।
1: उनके गाने इतने सदाबहार होते हैं कि हर पीढ़ी के लोग मतलब उसको पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि उन्होंने पूरे भारतीय जो सिनेमा कह लीजिए या फिर गीत संगीत कह लीजिए, उनमें उनका जो योगदान है वो सबसे ज्यादा खास रहा है।
0: तो बताइए कौन सा गीत उनका आज हम आपको सुनवाएं या आपको बेहद पसंद है और उसकी वजह क्या है कि ये गीत आपको क्यों बेहद पसंद है, आपके दिल के करीब क्यों है?
1: वैसे तो सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे एक गाना चुनना हो तो तेरे जैसा यार कहाँ, ये प्यारा सा गीत मुझे काफी ज्यादा पसंद है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और काफी इस गाने में बहुत उत्साह और दोस्ती के लिए जो एक कहते हैं ना आत्मसमर्पण वाली बात जो है हमें नजर आती है।
1: जी
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, और किशोर कुमार को समर्पित आपकी तरफ से ये गीत आपके लिए और हमारे सभी श्रोताओं के लिए
1: जी
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, बात कर रहे हैं
0: नमस्ते
1: गोपाल
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश, स्वागत है आपका। आज कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी, गीत हमारे।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं बोल रहा हूँ ग्राम संदल पुरातरी से, खाली चलने यादव ग्वारी पास गाँव में मैडम मेरा
0: आज
1: मेरे
0: हमारा
1: पास।
0: बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम समर्पित है महान अभिनेता, गायक, गीतकार, संगीतकार किशोर कुमार जी को। तो बताइए, किशोर कुमार जी का कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों? और किशोर कुमार जी के बारे में कोई ऐसी जानकारी
1: किशोर
0: जो
1: कुमार
0: आप
1: जैसे गायक लगा थी मैडम, उनके गाने बहुत पसंद है मेरे, पुराने गाने।
0: पसंद है तो बताइए ना, उनके बारे में कोई ऐसी बात आप जानते हैं? ऐसी कौन सी बात है उनके बारे में जो आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी मेरे पास है और
1: गायक
0: मैं।
1: गायक कलाकार अच्छी थी, वो बहुत पुराने गाने गाए इन्होंने किशोर
0: जी जी
1: कुमार जी ने।
0: बताइए, तो उनका कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है सुनने के लिए? अगर हम
1: मैं
0: कहें
1: गाना
0: कि
1: सुनवा
0: कोई
1: दूँ आप, वो गाना ना मैं तुमसे प्यार कितना ही हम नहीं जानते,
0: कौन
1: कुदरत
0: सा,
1: पिचड़ा गाना, कुदरत का। जी, उनके
0: चलिए
1: गाने बहुत पसंद है मेरे को।
0: जी, ठीक है। तो किशोर कुमार जी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: किशोर कुमार जैसे गायक कलाकार थे, उनकी जितनी तारीफ की उतनी कम है, बहुत अच्छे कलाकार थे वो।
0: चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपकी पसंद का गीत किशोर
1: मैडम
0: कुमार
1: आप
0: जी
1: कौन
0: का
1: बोल रही
0: गाया
1: हैं?
0: हुआ? जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, आपकी रेडियो
1: अब
0: संगीनी।
1: आपसे एक बार बात हुई थी।
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे स्वागत है। आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम और
1: जी
0: जगह
1: मैं
0: करें।
1: बात कर रहा हूँ सौमक सिंह MP धार से।
0: जी सौमक सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे
1: जी
0: हैं
1: मेरी
0: आप?
1: किन से बात हो रही है?
0: जी मैं आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप?
1: प्रियंका जी। अच्छा जी
0: जी कैसे हैं आप
1: जी
0: बताइए।
1: मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं समझता हूँ आप भी और हमारे सभी श्रोता खैरियत से होंगे।
0: बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो हम भी खैरियत से हैं।
1: जी जी जी
0: सौबत सिंह जी, आज किशोर कुमार जी की जयंती है, तो हम उनको समर्पित कर रहे हैं आज का फोन इन कार्यक्रम। बताइए आप उनके बारे में कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा कर सकें, या उनका कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है और क्यों?
1: किशोर साहब के बारे में मैं अभी कुछ देर पहले ही सोच रहा था और देखिए आज अब आपसे बात भी हो रही है।
0: जी
1: जिस दिन किशोर साहब का निधन हुआ उस दिन मुझे याद है कि मैं एक मतलब कहीं अकेला खड़ा हुआ था और नगीना फिल्म का एक गीत अनुराधा जी का बज रहा था। तो जब भी वो गीत मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जिस दिन अभी वो देखिए 40 साल होने जा रहे हैं इस घटना को,
0: जी
1: पर आज भी वो याद मेरे जहन में हमेशा बनी रहती है किशोर साहब को लेके। और इनका जो ये गीत है हमें तुमसे प्यार कितना, यूं तो बहुत सारे गीत मुझे इनके पसंद हैं, मतलब मैं अगर गिनने बैठता तो मुश्किल होगा, लेकिन
0: बिल्कुल।
1: ये गीत ना जाने क्यों मेरे दिल के बहुत बहुत ज्यादा करीब है ये।
0: इसके अलावा
1: तो
0: और कोई ये गीत, क्योंकि कुदरत फिल्म से ही है हमें तुमसे
1: हाँ
0: प्यार
1: कुदरत से
0: कितना।
1: है, बिल्कुल है।
0: जी हाँ, तो ये हमारे एक श्रोता पसंद कर चुके हैं, तो बेहतर
1: नहीं
0: होगा
1: मैं
0: आप।
1: मतलब
0: बिल्कुल
1: सुनने
0: बिल्कुल
1: की दृष्टि से नहीं बता रहा था,
0: जी, आप
1: मतलब
0: हमें
1: मुझे मुझे अच्छा लगता है इनका सबसे ऊपर अगर मैं गीतों की बात करता हूँ
0: जी,
1: तो।
0: तो ये गीत तो आपको सुनने को मिल ही रहा है, तो इसके अलावा दूसरी श्रेणी में आप कौन सा गीत रखते हैं जो आपको
1: उनके
0: बेहद
1: तो
0: पसंद?
1: बहुत सारे नायाब गीत हैं अगर
0: बिल्कुल,
1: मैं
0: कोई
1: कहूँ
0: एक पसंद
1: तो।
0: करना बड़ा मुश्किल है।
1: हाँ मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन आप मुझे उनका अगर चाहे तो मैं अगर उनकी लिस्ट में से कोई गीत बताऊं तो मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा
0: क्या
1: पुकारा,
0: बात है, बेहद खूबसूरत गीत है।
1: बहुत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें भी बड़ा पसंद है ये गीत। और क्या
1: और मैडम मैं
0: कशिश है
1: एक
0: इस
1: बात
0: आवाज
1: आपको
0: में?
1: बताता हूँ पुरानी बात जो किसी को भी नहीं पता होगी।
0: जी बताइए।
1: किशोर साहब के जो खंडवा में पड़ोसी थे राम नारायण दीक्षित जी, उनका मेरा मतलब भोपाल में रहना हुआ है, पड़ोसी थे मेरे वो,
0: जी अच्छा।
1: तो वो किशोर साहब के और अशोक कुमार साहब के दोस्त थे कह सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारी खूब आपस में एक दूसरे से कहा सुनी भी होती थी, लड़ाई होती थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे। और उस दौरान इन्होंने बताया कि इनके किशोर साहब ने इनके पिताजी की जो किताब थी वो उन्होंने एक कबाड़े वाले को भेज दी थी।
0: अच्छा।
1: तो फिर जब उनके पिताजी ने देखा कि किताब नहीं मिल रही तो फिर अशोक जी को और ये रामनारायण दीक्षित जी को उन्होंने भेजा, मतलब इन्होंने बात की,
0: जी
1: भेजा तो वो कबाड़े वाले के यहाँ से वो किताब लेके आए वापस और उनके और कबाड़े वाले ने 2-3 पेज उसके निकाल लिए थे। हाँ
0: ओहो, हाँ हाँ हाँ
1: लेकिन वो बाकी पूरी किताब उनको फिर सुरक्षित मिल गई थी
0: सुरक्षित मिल गई।
1: वहां।
0: तो आपके पास ये जानकारी भी होगी कि वो किताब किस संदर्भ में थी?
1: वो की जो जो चूंकि वो फील थे
0: हाँ
1: तो वो उनके विषय से ही संबंधित किताब थी वो।
0: जी। और देखिए आज

0: आपने अशोक कुमार जी का भी जिक्र किया, तो जहाँ आज किशोर कुमार जी की जयंती है, वहीं आज अशोक कुमार का जन्मदिन भी
1: अरे वाह,
0: है ना? तो ये एक कितना अद्भुत हमारे सामने एक आज की तारीख है कि दो, एक भाई का जन्मदिन है और एक भाई की जयंती
1: हाँ, कितनी
0: है ना?
1: मतलब, एक सोचो तो कितना एक संयोग है ये।
0: संयोग है, यही हम कह रहे थे। तो
1: बिल्कुल सही बात है मैडम, ये बात तो है।
0: जी, तो आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर। इसी तरह
1: जी
0: सुनते
1: जी
0: रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश और कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहिए।
1: जी
0: नमस्कार।
1: आपको भी, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए।
1: आपके नियमित श्रोता वाकचंद्र साहू जी गंज वासोदा से।
0: अच्छा, वागचंद्र जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया दीदी, क्या आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और आज है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे,
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी,
0: और आज का कार्यक्रम हम किशोर कुमार जी को समर्पित कर रहे हैं। उनकी जयंती पर एक विशेष प्रस्तुति है ये। तो बताइए,
1: बिल्कुल
0: किशोर कुमार
1: बिल्कुल।
0: जी के बारे में कोई जानकारी यदि आप साझा करना चाहते हैं, और उनका कोई ऐसा गीत जो आपको यदि कहें कि कौन सा सुनना चाहेंगे, तो कौन सा गीत आप बताएंगे?
1: अच्छा, दीदी नहीं देखो, किशोर कुमार ने तो जितने भी गीत गाए हैं वो सभी गीत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल
1: उनकी लाजवाब आवाज अच्छी है,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छी, उनकी आवाज ही अलग है।
0: जी, और उसी को
1: और
0: सुनकर आज हम खुश भी होते हैं, वो गीत गाते हैं तो
1: बिल्कुल
0: हम झूमते भी हैं, गीत में यदि वे
1: बिल्कुल
0: रोते हैं तो हमें भी मायूसी होती
1: बिल्कुल बिल्कुल, सही
0: है
1: बात
0: ना?
1: है, सही
0: जी
1: बात
0: जी
1: है।
0: तो बताइए, कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता है, या आज इतनी अंदर से ऐसी चेतना जागृत हुई कि आज किशोर कुमार जी का ये गीत सुनने हमें मिल जाए?
1: दीदी हम वो तो गीत तो उनके सुनते रहते, लेकिन आज कोई सी भी फिल्म का सुनवा देना, सब
0: जी, चलिए
1: गीत
0: ठीक है,
1: अच्छे हैं।
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।
1: ठीक है, नमस्ते दीदी।

0: हेलो, कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे। नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल स्वागत है। मैं बहुत बढ़िया, बहुत अंतराल के बाद में आपसे मेरी और मुलाकात हो रही है। अब
0: जी स्वागत है, बताइए कैसे हैं आप। इतनी दिनों की
1: बहुत
0: मुलाकात के
1: अच्छे,
0: बाद हालचाल कैसे हैं।
1: बहुत अच्छा है। पुणे में आपका प्रोग्राम सुना था मैंने भोपाल का, और मैंने फोन भी लगाया था पर फोन कट गया किसी अव्यवस्थित कारण, तो
0: जी जी होता है कई
1: याद
0: बार। हाँ, अक्सर कभी हो जाता है, कुछ तकनीकी
1: जी।
0: व्यवधान आ जाते हैं।
1: हाँ,
0: जी
1: तो
0: आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, पूना में कहाँ
1: मैं
0: से बात कर रहे हैं और अपना नाम।
1: पुणे से आ चुका हूँ मैडम। मैं भोपाल आया था, भोपाल से आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था आकाशवाणी पर, तो
0: हाँ
1: वो छुट्टी थी उस दिन, शनिवार इतवार आ गया था।
0: हाँ हाँ
1: और तो गृह मंत्री जी आए थे, तो उस दिन उस प्रोग्राम में सारे उद्घोषक और सारे व्यवस्थित थे, तो
0: जी
1: फिर मैं इंदौर आया हूँ। माशाल्लाह मैडम, आपका श्रोताओं की आंखों से देखता है हेलो भोपाल।
0: जी तो अपना नाम भी तो बताइए, परिचय, हम किस
1: मैं
0: नाम से आपको पुकारे।
1: कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी नियमित श्रोता बोल रहा हूँ
0: जी, तो बताइए कैसे हैं आप। ये हालचाल तो हमने आपके जान लिए कि
1: जी।
0: पूना, इंदौर, भोपाल होते हुए अब आप इंदौर से बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं, है
1: जी
0: ना
1: जी बिल्कुल
0: जी। आज हमारा कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और
1: बिल्कुल।
0: आज का कार्यक्रम
1: हाँ
0: जो है वो किशोर कुमार जी को समर्पित है।
1: हाँ
0: तो
1: जी जी
0: हम आशा करते हैं, हम चाहेंगे कि उनके बारे में जो बात आप जानते हो वो हमसे साझा करें, और उनका गाया हुआ कोई एक गीत जो आप सुनना चाहते हो।
1: हाँ तो अब उसका गाना तो मैडम उनकी यादें तो बहुत, हमने खंडवा में पिछली बार भी गए थे तो बारिश की वजह से हम वहां नहीं देख पाए थे प्रोग्राम, क्योंकि वहां तक कार्यक्रम, और इस बार तो हम जाने की कोशिश करेंगे खंडवा में, क्योंकि
0: जी
1: हमारे दिले अजीज और हलफल मोला, हमारे
0: बिल्कुल
1: किशोर कुमार जी की यादें तो जितनी बहस कही जाए
0: जी
1: और उनके इतना कम है। और अमित जी की जो आवाज था और जो उनका अंदाज, किशोर कुमार जी के गाने का अंदाज, उनके हर एक गाने, वो
0: जी
1: गद्दर का सिकंदर हो, अजनबी हो या कोई भी गाने हो उनका, तो इस बार ये गाना उनका, ये गाना मुझे बहुत अच्छा पसंद है। ये रुमाल आप जो भूल गए हैं जो गाते हैं किशोर कुमार जी
0: जी
1: राजीव
0: जी जी
1: खन्ना
0: जी
1: की फिल्मों
0: हाँ
1: पर,
0: हाँ जी जी जी बिल्कुल
1: हाँ तो
0: हाँ
1: वो बिल्कुल गाना आप उनको प्रसारित कीजिए, आप बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम में आप जो जो भरोसा और सादगी और ईमानदारी में आप जो इस बात को, शैली को अलग अलग बात में आप गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन।
0: जी शुक्रिया। तो
1: हाँ और
0: आपकी ये पसंद और आपकी ये हौसला अफजाई हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी शुक्रिया बहुत बहुत, और सुनिएगा ये गीत आपके लिए।
2: एक

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा मर जाओ।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी बताइए।
1: मैं ग्राम बालोदा लक्का तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने
0: जी नाम क्या है आपका?
1: कन्हैयालाल प्रजापति, ग्राम बालोदा लक्का जिला उज्जैन
0: जी
1: जी तहसील बड़नगर।
0: हाँ जी कन्हैयालाल जी, स्वागत है आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, और आज एक बेहद ही जो कहते हैं नामचीन हस्ती है, अपने आप में न भुलाई जाने वाली हस्ती है किशोर कुमार जी, तो उनको समर्पित है हमारा आज का कार्यक्रम। तो बताइए किशोर कुमार जी के बारे में आप कौन सी ऐसी बात हमसे साझा करना चाहेंगे, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और उनका गाया कोई एक गीत जो आपको बेहद पसंद हो।

0: किशोर कुमार की आवाज का है ना
1: जी, और किशोर कुमार की आज जयंती है।
0: आप जयंती है? हाँ
1: हाँ जी,
0: हम तो वहाँ गए थे, भोपाल भी गए, वहाँ गए थे हम खंडवा,
1: खंडवा
0: किशोर कुमार जी का मकान भी देख करके हम आए हैं।
1: क्या बात है
0: उसकी। हाँ, उनके वहाँ पुण्यतिथि थी, वहाँ स्मारक बनी थी, वहाँ भी हम वहाँ पर चरण स्पर्श करके आए हैं हम वहाँ खंडवा में।
1: क्या कौन सी बात अच्छी लगती है किशोर कुमार जी की आपको?
0: वो गाना जो सुना दिए कौन सा जी गाना
1: जी, लेकिन गाना तो हम बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन आपको कौन सी बात उनकी बहुत अच्छी लगती है?
0: किशोर कुमार की क्या है, आवाज ही उनकी तो बुलंद थी और गाना एक से बढ़कर एक गाने थे उनके।
1: बिल्कुल जी जी जी हाँ, तो कोई भी गीत सुने हमें बड़ा अच्छा लगता है उनका, है ना?
0: उनका गीत तो बहुत फेमस हुआ था। क्या उनकी तो आवाज ही एक अजीब सी थी। क्या
1: कोई एक फेमस सा गीत आपको याद आ रहा है इस वक्त
0: किशोर कुमार का?
1: जी,
0: किशोर कुमार का आवाज तो मेरे को मतलब गीत याद नहीं आ रहा है, परंतु वैसे तो ये गीत है उनके। क्या
1: हाँ, कई गीत है तो ये ऐसा है कि तुरंत कोई गीत याद हमें नहीं आता है, है ना? लेकिन ठीक है, हम आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए बिल्कुल आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ का कोई ऐसा गीत जो हमारी पसंद के साथ साथ आपको भी पसंद आए। जी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते। हमारी आवाज़ देर से पहुंच रही है लगता है आप तक।
1: हाँ मैम, कैसे
0: अच्छा तो बताइए आप
1: हो
0: कौन
1: आप?
0: बात कर रहे हैं, पहले अपना नाम बताइए फिर हम बताते हैं हम कौन बात कर रहे हैं।
1: हीरू, हम बढ़िया
0: अच्छा
1: मैम,
0: तो ये भी
1: आप
0: बताइए
1: कैसे
0: कहाँ,
1: हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अपने नाम के साथ ये भी बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं धार से बोल रहे, धार
0: धार
1: जिला।
0: से। हाँ, तो
1: हाँ
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात हो रही है तो हमें और अच्छा लग रहा है। और
1: हाँ
0: हीरू जी, आज का कार्यक्रम हम किशोर कुमार जी को याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर।
1: हाँ
0: हाँ तो किशोर कुमार का कोई गीत आपको अभी याद आ रहा है कि हम आपको सुनवाएं, या उनके बारे में कुछ, आप उनकी कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है कि आप हमें बताएं और हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: इतनी नॉलेज नहीं अपन को कि अपन
0: अच्छा ये
1: वही
0: बताइए,
1: किशोर
0: आप ये
1: कुमार के,
0: जानते हैं कि किशोर कुमार जी कौन थे? अच्छा
1: फिल्म में वो नहीं है, मेरा हस्बैंड को दो। नमस्कार
2: नमस्कार सर जी। ठीक
0: नमस्कार, कैसे हैं आप, अपना नाम बताएं।
2: है, नॉर्मल है। नाम तो सर जी अनोखे सिंह है।
0: अच्छा जी, तो हम ना आज का कार्यक्रम जो है किशोर कुमार जी को समर्पित कर रहे हैं, तो उनका कोई गीत आप
2: हाँ,
0: पस सुनना चाहेंगे और कोई ऐसी बात जो आप हमसे साझा करें, हमारे श्रोताओं से साझा करें।
2: मैं खंडवा निवासी है, दा तो किशोर दा।
0: और गीत कौन सा सुनना चाहेंगे बताइए।
2: अब किशोर दा का गीत तो देखो, हम तो हीरो के आधार पे अब इनके स्टेटस, हमको इतनी जानकारी नहीं है कि इनका गीत कौन सा है और क्या नहीं है।
0: चलिए ठीक है, तो हम सुनवाते हैं आपके लिए किशोर कुमार की आवाज का।
2: ये मन पसंद हमारा है।
0: नहीं, कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे किशोर कुमार जी को
2: हाँ
0: समर्पित कर
2: हाँ
0: रहे हैं, तो
2: हाँ
0: आज
2: हाँ
0: सारे गाने हम किशोर कुमार जी के सुनवाएंगे आपको। नमस्कार।
3: है।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार आदरणी जी।
0: आप सम्माननीय माननीय हमें भी अपना परिचय दीजिए। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं आपका नीमित श्रोता जय नरसिंहदेव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कार बात कर रहा हूँ।
0: जी कमलेश जी, कैसे हैं?
1: बिल्कुल सकुशल है मैम जी, आपको सुन रहे हैं। और
0: कमलेश जी, आज का कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर हमारे विषय होता है, बात आपकी होती है और गीत हमारे होते हैं, लेकिन आज संयोग ऐसा है कि गीत भी हम आपकी ही पसंद का सुनवाएंगे। तो ये तो हुई सोने पे सुहागा वाली बात, मानते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम जी, सोने पे सुहागा वाला कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है, मैं समझता हूँ, तो मेरा सौभाग्य भी है
0: जी। तो आज का कार्यक्रम जो है किशोर कुमार जी को हम समर्पित कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। तो किशोर कुमार का कोई ऐसा संस्मरण या उनकी स्मृति में कोई ऐसी बात आप हमसे साझा करें हम चाहेंगे, और उनका गाया कौन सा गीत आप चाहेंगे सुनना या आपको बहुत पसंद है?
1: देखिए, किशोर जी की बात करें अपन तो खंडवा में मैम जी गया हूँ,
0: जी
1: लेकिन मैं दुर्भाग्यवश कह सकता हूँ कि उनकी जो समाधि स्थल है वहां तक नहीं पहुंच पाया। और सचमुच में किशोर जी के लिए कोई शब्द ही नहीं है ऐसे मेरे जहन में कि उनकी तारीफ के लिए, उनकी आवाज के लिए कुछ कह सकूं मैम जी, ये मैं समझता हूँ। और रही बात मैम जी किशोर जी को समर्पित है कार्यक्रम, तो किशोर जी ने दो एक गाना गाया है दो आवाज में।
0: हाँ, कौन सा?
1: आके सीधी लगी मुझको कतरिया ओ गुजरिया।
0: अच्छा, हाँ जी हाँ,
1: हो सकता है आपको भी संस्मरण हो
0: बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो
1: जी।
0: हम यही गीत सुनवाएंगे, और बहुत ही एक विलक्षण प्रतिभा थी किशोर कुमार जी में, कि दोनों तरह के गाने गा लेते थे। वो अभिनय भी कर लेते थे और गीत भी लिख लेते थे, संगीत भी दिया है उन्होंने। जो हमने कार्यक्रम के आरंभ में गीत सुनवाया, गीत संगीत निर्माता निर्देशक सभी कुछ उस फिल्म में किशोर कुमार जी का ही है, दूर गगन की छाव।

0: में फिल्म।
1: जी।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, और आपने भी एक बहुत अलग अंदाज का गीत पसंद किया है, जैसा अलग अंदाज किशोर कुमार जी का था वैसे ही अलग अंदाज का गीत आपने आज हमें याद दिला दिया। तो आपके लिए और हमारे सभी श्रोताओं के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
1: जी, मैम जी, आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद।
2: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरे

0: गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सांवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजर

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोर।

लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ संवरिया।

0: गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: श्रोताओ, ये था किशोर दा को समर्पित आज का फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। किशोर दा को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके गीतों को सुनते रहें, गुनगुनाते रहें और उनकी कला की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहें। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका को। नमस्कार।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। डिजिटल शक्ति दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति विजन 2047 का मसौदा तैयार कर लिया है। यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, तकनीक रूप से उन्नत, पर्यावरण अनुकूल और संसाधन कुशल इस्पात क्षेत्र के निर्माण के लिए दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कल 14 अक्टूबर से विभागीय पदोन्नति

0: विधि की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। इसमें सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और लागू नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से अब तक कुल 4,06,338 फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के 1,92,851 फॉर्म शामिल हैं। अर्बन कॉन्क्लेव आगामी 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में नगरीय विकास, आधुनिक तकनीक और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। भोपाल में आबकारी विभाग ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पूर्व ओएसडी दीपम रायचूरा को निलंबित कर दिया है। शराब दुकान टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में ये कार्रवाई की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के 9 जिलों में आंधी, गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है हे बेबी फिल्म से। सोनू निगम, शान, शंकर महादेवन की आवाज आप सुनेंगे। समीर के बोल हैं, संगीत है शंकर एहसान लॉय का। पसंद आप सब श्रोताओं की। विपिन मिश्रा और उनकी माताजी राजमणि मिश्रा, शानू मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है हमें सतना से। रीवा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं पुष्पेंद्र शर्मा, आशा शर्मा, रत्नेश शर्मा, श्रेया त्रिपाठी, आस्था तिवारी और उनके मम्मी पापा। इसी गीत को पसंद किया है छतरपुर से विशु के मम्मी पापा, नाना नानी और दादा दादी ने। तो आइए सुनते हैं हे बेबी फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया लावा फिल्म का वो नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कार्तिक और युवराज इस गीत को सुनना चाहते हैं। सालापुर जिला बारा राजस्थान से इस गीत को पसंद किया है सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक और इनके परिवार के सदस्य। गुना से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर के श्रोता हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज और उबेद, जुनेद और आयत। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर लावा फिल्म का ये नगमा।

अप्रैल फूल। जी हाँ, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की है। हसरत जयपुरी का लिखा नगमा है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश के साथ ऋषि वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रमिलागंज आलौट से। इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोता पसंद कर रहे हैं, छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो, राजिम से समयलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, मुन्नी धीवर। और इसी गीत के लिए एक पत्र हमें मिला है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन का। तो आइए सुनते हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं उस्तादों के उस्ताद फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, असद भोपाली के शब्द, संगीत रवि का। पसंद आप सब श्रोताओं की। ये हैं कावई राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी और हर्षिता। इसी गीत को पसंद किया है उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोताओं ने भी। ये हैं अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस, एकांश, श्वेता, सुमित और इनके परिवार के सदस्य। बदलापुर मुंबई के श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन और इनके मम्मी पापा। बहादुरा नागपुर के श्रोता हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, पसंद आप सब श्रोताओं की। यवतमाल के श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू, रंजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता कटनी से इस गीत को सुनना चाहते हैं, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा भी इसी गीत को पसंद कर रहे हैं।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो रिपोर्ट की प्रस्तुति की 12वीं कड़ी।

0: आज सवेरे से ही गांव में हलचल मची हुई है। कच्ची झोपड़ियां हस्ती जान पड़ती हैं। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। कुदई चौधरी के द्वार पर चंदूवा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वो है नोहरी बुढ़िया। वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से ये समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कुदई के द्वार पर जाए और कहे,
1: मैं ये लाई हूं।
0: वो तो दानों को मोहताज है। नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज्य था। कुदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा, लेकिन वो सब कुछ विधाता ने हर लिया। अब न धन रहा न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए केवल वही बाकी थी। आंखों से सूझता नहीं था, कानों से सुनाई नहीं देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। और उधर कुदई के भाग उदय हो गए थे। आज जलसा भी कुदई के द्वार पर हो रहा है। नौहरी को अब कौन पूछेगा, ये सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा।
1: हाय, अगर भगवान ने मुझे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़ों को लीपती, द्वार पर बाजी बजवाती, एक कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियां बनवाती और जब सब लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए उनकी भेंट कर देती।
0: उसे वो दिन याद आया जब वो अपने बूढ़े पति को लेकर यहां से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वो उत्साह, वो सात्विक प्रेम, वो श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी।
2: भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है।
0: नौहरी ने चौधरी को कटार भरी हुई आंखों से देखा।
1: निर्दयी मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जो कुछ देना है वो उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं?
2: हम किसी से कहें ये नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वो पुनारी हाली, अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाश कैसे रहेगी?
1: जले पर नमक न छिड़को देवर जी, भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना ना पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत जोगी जति हाकिम सूबा सभी आते थे।

0: दिन बराबर नहीं जाते।
1: भाभी तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम ये ना कहने लगो कि मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं।
2: ये कहता हुआ कोदई चला गया। नौहरी अभी बैठी ही थी कि शोर मचा, जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राज रत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छाड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, मानो स्वराज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। दो दो आदमियों की कतारें थीं। हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज का आलिंगन करने को तैयार हो। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों की हवा कर रहे थे। इस समारोह में नौहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वो अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वो कोई रानी हो, मानो ये सारा गांव उसका है। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी ना किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही अपने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वो एक पल अनुरक्त आंखों से आजादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वो नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नवयौवना प्रेम और उल्लास के मत से विवल होकर नाचे। लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वो बुढ़िया अपना नृत्य कौशल दिखा रही थी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वो अपना सारा दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहां सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहां ना जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहां से आ गई। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं, और फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है।
1: बस करो भाभी, बस करो।
0: देवर जी, जरा देखो तो कैसा नाचते हो।
1: अब बुढ़ापे में क्या नाचूं भाभी?
0: अरे मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती? हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो उन्होंने ये प्राण लिए हैं। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां घुड़कियां सुनी हैं। अब तो उस जोर जुलम का नाश होगा। हमारा और तुम्हारा क्या अभी बूढ़ा होने का योग है? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो, ईमान से कहो, यहाँ कितने आदमी हैं जिसने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? घी किसी को सूंघने को मिला है? क्या कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपया देते थे, अब उसी के 2 रुपया देते हो? क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सहकर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले के दिनों का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं। और तो सभी हमें पीस कर हमारा रक्त निकालना जानते हैं।
2: यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे। कोदई के द्वार पर मशालें जल रही थी, कई गांवों के आदमी जमा हो गए।

0: यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा,
1: भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया, उससे हमें ये आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजर्बे से कहता हूं कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्म बुद्धि है, वो संसार के और किसी भी देश में नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता हैं, देवता। आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है।
2: लेकिन भैया, सीधापन तो गुण कहलाता है।
1: घूरेलाल, मैं समझाता हूं, बुरा ना मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य ही नहीं।
3: काहे भैया, क्यों?
1: अरे आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है और आप चू भी नहीं करते। अंग्रेजों के हमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं और आप जवान तक नहीं हिलाते। भाइयों, इसका नतीजा यह हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं और आपको खबर ही नहीं है। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काट कर कपड़े बुनकर गुजारा करते थे और अब सारा कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यहीं इसी देश में नमक बनाते थे और अब नमक बाहर से आता है। यहां नमक बनाना जुर्म है, पर आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ नमक के लिए देते हैं।
3: 7 करोड़ रुपए
1: आपके उसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है और आप उसे छू भी नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी कर लग जाए।
4: अरे नहीं बाबा, नहीं।
1: बोलिए भाइयों, बोलिए, क्या आप अब भी ये अन्याय सहते रहेंगे?
4: नहीं।
5: लेकिन भैया, हम किस लायक हैं?
1: भाई सेवाराम, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। हाँ, आप ही की गर्दन पर। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। ये समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बनकर रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जान हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वो कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए?
3: सही बात है, सही बात है।
1: वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए, जरा सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे?
6: हाँ, करेंगे।
1: मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को ही कोसते रहेंगे? बोलिए।
6: कदापि नहीं,
3: हम लोग साथ हैं।
1: ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। साथियों, हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, क्या आप सब मदद कर सकते हैं?
0: कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस का दरोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए जगह खोजने लगे।
7: मार कर भगा दो इन बदमाशों को।

0: कोदैया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहां?
1: कोदई ने लाल लाल आंखों से दरोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज अगर उनके सिर गृहस्थी का बखेड़ा ना होता, लेना देना ना होता, तो वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए थे, वो इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई जवाब ना दिया था। नौहरी पीछे से आकर बोली,
2: क्या लाल पगड़ बांधकर तुम्हारी जी बैठ गई है? कोदई क्या तुम्हारा गुलाम है कि कोदैया कोदैया कर रहे हो? अरे हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती?
1: दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया।
0: कोदई, कौन है ये शैतान की खाला? खुदा का खौफ ना होता तो इसकी जुबान तालू से निकाल लेता मैं।
2: अरे क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरते। जानते हो कि ये लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? ये वो लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तुम इन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गरम करते हो और अंग्रेजों की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तो मुझे बदमाश कहते हो?
1: नौहरी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दुबक गए थे फिर जमा हो गए। दरोगा ने देखा भीड़ बढ़ती ही जाती है, तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़ा। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नौहरी पर भी पड़ा।
2: लड़कों क्यों भागते हो? क्या दावत खाने आए थे? यहाँ कोई नाच तमाशा हो रहा था। तुम्हारी इसी कायरता ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक मार धार गली गुफ्तार सहते रहोगे?
1: एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम पर औंधे मुंह गिर जाती कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया और बोला,
3: क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्तों पर वार करते हो, ये मर्दों का काम नहीं है।
2: अरे मरद होते तो गुलाम ही क्यों होते? आदमी इतना भी निर्दयी हो सकता है भला? अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उसका राज है, मगर तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कोई हुक्म दे तुम दूसरों की गर्दन भी काट लोगे।
0: ए, तुम किसके हुक्म से गांव में आए हो?
4: खुदा के हुक्म से।
0: तुम रियाया के अमन में खलल डालना चाहते हो?
4: अगर रियाया को उनकी असली हालत बताना उनके अमन में खलल डालना लगता है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं।
1: भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा,
3: भाइयों, इस वक्त कई गांव के आदमी यहां जमा हैं। दरोगा ने हमारी जैसी बेआबरूई की है, क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार भी डाले जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, यह हमारी इज्जत और आबरू। दिदकार है ऐसी जिंदगी पर।
1: समूह स्थिर खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेल से रुक जाए। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दरोगा ने उनके तेवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
3: मैं कहीं नहीं भागूंगा, कहीं नहीं भागूंगा।

0: ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके।
1: दूर हटाओ इससे, दूर हटाओ, हट जा नहीं तो गोली चला दूंगा, हटो।
2: अरे जा जा।
3: भारत माता की
4: जय,
3: भारत माता की
4: जय,
3: भारत माता की
4: जय।
0: दरोगा ने देखा अब जान बचती नजर नहीं आती, नम्रता से बोला,
5: नायक साहब ये लोग तो फसाद पर आमादा है, देखिए इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।
6: नहीं दरोगा जी, जब तक हम में से एक आदमी भी यहां रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ ना उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम और आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं। भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूं कि यह न्याय और धर्म की लड़ाई है। दरोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है, मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूं। धन्य है वे लोग जो आजादी की लड़ाई में सजा पाए, यह बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है। भाइयों, कृपया आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें।
1: चलो कोदई, चलो कोदई।
0: दोनों लड़के आंखों में आंसू भर लाए और कातर स्वर में बोले,
5: हमें क्या कहे जाते हो दादा?
3: भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वो करना जो मर्दों को करना चाहिए।
0: गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ा जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ नहीं कर सके। अब वे मुंह दिखाएं तो कैसे दिखाएं? हर एक मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया हो। सहसा नौहरी ने चिल्लाकर कहा,
7: अब सब जने खड़े क्यों पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा या अभी भी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते।
0: कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला,
5: हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी, हमारे जीवन को धिक्कार है। अभी तो हम हैं तुम्हारे बालक, मैं चलता हूं उधर, मेरे पीछे खेतीबारी गंगा देखेगा।
0: गंगा उसका छोटा भाई था, बोला,
8: नहीं नहीं भैया, तुम ये अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। अरे तुम रहोगे तो गृहस्थी संभलेगी, मुझसे तो ये कुछ होगा नहीं, मुझे जाने दो भैया।
5: देखो गंगा, इसे काकी पर छोड़ दो, इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, जिसे काकी का हुक्म हो वो जाए।
7: भाई जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी।
5: क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा।
7: अरे चलो रहने दो, अरे मरते समय राज मिला है तो सोचा भी कुछ कमा लूं।
8: अरे मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी, हाँ अब की बाजार जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए पूर्वी तंबाकू का पत्ता लाऊंगा। हाँ।
7: तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना।
5: देखो काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो।
7: अरे अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे?
8: हाँ ये तो है।
0: गंगा ने नौहरी के चरण छुए, फिर भाई के गले मिला और बोला,
8: कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ।
6: अब मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम।
3: महात्मा गांधी की
4: जय,
3: महात्मा गांधी की
4: जय,
3: महात्मा गांधी की
4: जय। मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह।
6: अरे भजन सिंह तुम नाम लिखवा रहे हो?
4: सेवाराम तुम सरकार के मुलाजिम होते हुए भी नाम लिखवा रहे हो, तो हम तो पहलवान है भाई, पहलवान।
9: अरे भजन सिंह तुम्हें कौन नहीं जानता, 5-10 गांव में तुम्हारे जोर का कोई पहलवान नहीं है। भाई मेरा भी नाम लिखो, घूरे लाल।
4: तुम तो गांव के चौकीदार हो।
6: हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी अपना नाम लिखवाओगे।
9: भैया 20 साल हो गए गुलामी करते करते, अब थक गया हूँ।
3: महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की।

0: भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया।
1: मेरा नाम भजन सिंह है, 10-5 गांव में पहलवानी के लिए मशहूर हूं। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंग्रेजी सरकार को पटक कर ही दम लूंगा। हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूं बिल्कुल। हाँ,
0: अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए भजन सिंह नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया।
2: मेरा नाम लिखो, घूरे।
0: ये गांव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा उठा कर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास ना आता था कि घूरे भी अपना नाम लिखवाएगा।
1: अरे तुम्हें क्या हुआ घूरे लाल, क्या 20 साल तक गुलामी करते करते थक गए?
3: नायक भैया मेरा नाम भी लिखो, काले खां।
0: काले खां जमींदार का आदमी था। उसका काम लठ के जोर से कर्जा वसूलना था। वो बड़ा ही जाबिर और दबंग था। उसके नाम लिखाने पर लोगों को आश्चर्य हुआ।
4: काले खां,
5: मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है। क्यों
3: भैया, जो आदमी भटकता रहे क्या उसे कभी सीधे रास्ते पर आने का समय नहीं मिलेगा?
4: हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो।
3: अब जिसका नमक खाता था उसका हुकुम बजाता था।
4: ये बात तो सही है।
3: अब मालूम हुआ कि मैं बड़ी भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है।
4: बिल्कुल सही कहा है।
3: मैं हाथ जोड़कर तुम सब से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो और मुझे भी अपने साथ ले लो।
0: पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे और चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो। और वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृत्ति मात्र है। ज्यों ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है। व्यवस्था और संगठन तो गौण है। नायक ने अपने सेवकों को संबोधित करते हुए कहा,
6: मित्रों, आज आप आजादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपको मालूम है कि हम किस तरह की लड़ाई करने जा रहे हैं? भाइयों, आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की जाएंगी, तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध भी त्याग दीजिए।
4: बिल्कुल सही कह
6: रहे हैं। हम सब धर्म संग्राम में जा रहे हैं और हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। बोलिए भाइयों, आप लोग इसके लिए तैयार हैं?
7: तैयार हैं।
0: उस सुहावने सुनहरे प्रभात में जैसे उमंग खुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंकों में, प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूंज उठा।
8: हम सौरा जी कहां चले?
9: अंग्रेजों की जेल में।
8: हम सौरा जी कहां चले?
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 12वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। और लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। डिजिटल शक्ति इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कल यानी 14 अक्टूबर से विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। इससे लंबे समय से लंबित पदोन्नति के मामलों पर विचार का रास्ता खुलेगा। पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति पर सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और लागू नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से अब तक कुल 4,06,338 फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग

0: के 192,851 फॉर्म शामिल हैं। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में आज पीवी सिंधु, तन्वी शर्मा, अस्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा मैदान में होंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत अपनी चुनौतियां पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मुकाबला कल होगा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

नमस्कार, आप सभी सखियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। जी हां सखियों, नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। मां की आराधना के ये 9 दिन हमें बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। भारत या भारत के बाहर रहने वाला हर भारतीय नागरिक अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मां की पूजा अर्चना में लीन है। आकाश में चंद्रमा मध्यम गति से अपनी दूधिया चांदनी धीरे धीरे बिखेरता हुआ आगे बढ़ रहा है और इस मृत्यु लोक में हरी भरी धरा के साथ सुगंधित फूल माँ के स्वागत को आतुर हैं। बात अगर हमारे घरों की हो तो हर घर वंदन वार से सज चुका है। घरों के भीतर माँ का आसन लग चुका है जिसमें सुंदर मंगल कलश स्थापित हो चुका है और हर व्यक्ति आत्मीयता और श्रद्धा के साथ माँ का पूजन अर्चन भी कर रहा है। एक बार फिर से सभी सखियों को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं।

भारतवर्ष में अलग अलग शहर की नवरात्र अपनी अपनी खासियत रखते हैं। हम बात करें माँ अहिल्या की नगरी इंदौर की। जी हाँ, हमारे इंदौर शहर में भी माँ के नवरात्रे बहुत धूमधाम और उत्साह से मनाए जाते हैं। इंदौर की हर गली, हर चौराहा, हर मैदान गरबे पांडाल से सज चुके होते हैं। नवरात्रों की एक खासियत और भी है कि इंदौर की सड़कें दिन में थोड़ी सूनी हो जाती हैं और जैसे जैसे रात्रि का प्रहर आगे बढ़ता है, आधुनिक जुगनुओं से टिमटिमाती ये सड़कें रोशन हो जाती हैं, जगमग हो जाती हैं और भीड़ भाड़ का माहौल शुरू हो जाता है। ये भी देखा गया है कि रात्रि के समय इंदौर की सड़कों पर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। कारण ये कि युवक युवतियां गरबा पांडाल की ओर आते जाते नजर आते हैं। जी हाँ, जब इनकी सज धज और चेहरे की रौनक देखी जाए तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है और इंदौर का हर घर रात में सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरबा पांडाल में गरबे का आनंद लेने जाते हैं। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, माता मंदिरों का दर्शन करते हैं और गरबे मेलों का भी आनंद लेते हैं। बात अगर गरबा डांडिया रास की हो तो हमारे कानों में ढोल नगाड़ों की थाप स्वतः ही सुनाई देने लगती है। गरबे की तालियों की खनक और पैरों की थाप से हम भी मजबूर हो जाते हैं झूमने और गरबा करने के लिए। तो आइए माहौल को गरबे जैसा बनाते हैं और सुनवाते हैं आपको गरबा गीत।

सखियो, नवरात्रि चल रहे हैं, हम बात करेंगे इंदौर शहर में कुछ प्राचीन और चमत्कारी माता जी के मंदिरों की, जिनमें भक्तों की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजासन माता मंदिर के बारे में। आपके चरणों में हम सबका नमन है। ये मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के पास एक ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग 1000 वर्ष पुराना जाता है बीजासन माता मंदिर। वर्तमान

भव्य मंदिर का निर्माण 1760 में महाराजा शिवाजीराव होलकर द्वारा करवाया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल ने मांडू के राजा को युद्ध में हराने के लिए यहाँ माता से मन्नत मांगी थी। खास तौर पर नवरात्रों में बीजासन माता में श्रद्धालुओं का मेला उमड़ता है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है और एक भव्य मेले का आयोजन भी यहाँ होता है। आइए हम सब भी माता बीजासन के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ माँ नव रूपों में पिंडी के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हें सौभाग्य और पुत्र दायिनी देवी के रूप में माना जाता है। पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ इंदौर शहर और एयरपोर्ट के रनवे का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। आइए हम सब मिलकर माता बीजासन के चरणों में नमन करें, पूजन अर्चन करें।

0: अब हम बात करें माता अन्नपूर्णा मंदिर की। दक्षिण पश्चिम इंदौर के अन्नपूर्णा रोड पर स्थित ये मंदिर, मंदिर का प्रारंभिक इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सन 1959 में महामंडलेश्वर स्वामी प्रवनानंद गिरी महाराज ने इस पवित्र धाम का जीर्णोद्धार करवाया और 1975 में इसका मुख्य भव्य प्रवेश द्वार तैयार हुआ। मंदिर की विशेषता यह है कि वास्तुकला के हिसाब से मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर की द्रविड़ शैली से प्रेरित है अन्नपूर्णा मंदिर। इसके मुख्य द्वार पर चार विशालकाय हाथियों की मूर्ति बनी है। मुख्य शिखर 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। यहाँ मुख्य रूप से भोजन और पोषण की देवी अन्नपूर्णा के साथ माँ कालिका और सरस्वती जी भी विराजमान हैं। तो भक्तों, इन नवरात्रों में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी जरूर लीजिए।
1: मैं तो

इंदौर का सिद्धपीठ हर सिद्धि माता मंदिर इंदौर के मोती तवेला रोड राजवाड़ा के पास स्थित है। ये मंदिर ये इंदौर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण सन 1776 में मराठा रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर की स्थापना से पहले जनार्दन भट्ट नामक भक्त को स्वप्न में आया था कि पास की एक प्राचीन बावड़ी में माता की मूर्ति दबी हुई है। जब राजा ने बावड़ी खाली करवाई तो सचमुच वहां से माता महिषासुर मर्दिनी की प्राचीन प्रतिमा निकली, जिसके बाद यहां माता जी की स्थापना की गई। ये मंदिर तंत्र साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए एक प्रसिद्ध पवित्र सिद्धपीठ माना जाता है।

अब हम बात करें माँ काली का मंदिर की। ये मंदिर खजराना गणेश मंदिर के परिसर के ठीक पास स्थित है। इस मंदिर के आधुनिक स्वरूप का निर्माण एक इंजीनियर राधेश्याम अग्रवाल बापू जी की गहरी भक्ति से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी 3 फैक्ट्रियां तक बेच दी थी। माता जी की 9 फीट ऊंची संगमरमर की भव्य प्रतिमा सन 1991 में राजस्थान के छितौली गाँव से लाकर प्रतिष्ठित की गयी। मंदिर में स्थापित माता कालिका की विशाल प्रतिमा इतनी सजीव लगती है मानो माता साक्षात खड़ी हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। माता के भक्त माता कालिका के दर्शन भी करें और मेले का आनंद भी लें। माँ वैष्णो देवी मंदिर इंदौर के लाल बाग पैलेस के पास स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जम्मू के प्रसिद्ध कटरा वैष्णो देवी मंदिर की हूबहू प्रतिकृति के रूप में बनाया गया। मंदिर के भीतर जाने के लिए श्रद्धालुओं को कृत्रिम गुफाओं और ठंडे पानी के झरनों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है और बिल्कुल जम्मू की यात्रा जैसा एहसास कराता है। यहाँ माता वैष्णो अपनी पिंडी और मूर्ति स्वरूपों में गुफा के अंदर विराजमान हैं। इंदौर के इन प्रसिद्ध माता मंदिरों के साथ साथ आप कनकेश्वरी माता मंदिर, केला देवी मंदिर और अम्बा वाली माता मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं।

हमारी सखियों से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इन नवरात्रों में माँ की आराधना पूरी आस्था और श्रद्धा से कीजिए। हाँ, तो प्यारी प्यारी सखियों, मंदिरों में माता जी के दर्शन करें, गरबा भी खेलें, अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें। हमारी कुछ सखियां ऐसी हैं जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, तो वो उपवास से परहेज भी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, सेहत को नजरअंदाज ना करें और नवरात्र पर्व का आनंद लें, श्रद्धा विश्वास के साथ पूजन अर्चन करती चलें। शारदीय नवरात्र के एक बार फिर से आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। अनुमति दीजिए अपनी सखी संयोगिता जोशी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 होने को हैं और ये समय होता है लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, उसके बाद में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, वो कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं प्रभुलाल मालवीय और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे नरेंद्र चंचल के गाए गीत और भजन। शुरुआत करते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल को। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का ये गाना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है।

मिस्टर नटवर लाल के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम का एक गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक

0: प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को समावेशी तकनीक का उदाहरण बताया। उन्होंने विदेशी मेहमानों से इसे आजमाने की अपील की और कहा कि देश में सड़क किनारे सामान बेचने वाले से लेकर कार शोरूम तक सभी एक ही डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश में कुछ सौ स्टार्टअप थे, जबकि अब इनकी संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। इनमें करीब आधे छोटे शहरों और कस्बों से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके अनुभव से उत्तराखंड की प्रगति को फायदा मिलेगा। डॉक्टर बिसेन सिवनी जिले के रहने वाले हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2003 से 2005 तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे वर्ष 2019 में बालाघाट से सांसद चुने गए थे और 2024 तक इस पद पर रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 1 सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय संयुक्त कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों, किसान संगठनों, शुगर मिलों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। ये कमेटी गन्ने की कटाई, रिकवरी, वजन और लैब जांच से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करेगी। इंदौर में ताज विवांता होटल के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे इंदौर और मालवा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और नए निवेश से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए ये होटल काफी अहम साबित होगा।
1: इंदौर और मालवा को ये बड़ी सौगात मिली। मध्यप्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जब सिंहस्थ सामने है 2028 ऐसे में इंदौर जैन के पास में होने के कारण से यह अत्यंत महत्व का स्थान भी है और ऐसे में भी व्यापारिक गतिविधि, कारपोरेट जगत की मीटिंगें, काफी कई प्रकार के कामों के लिए एक स्टार होटल की जो आवश्यकता होना चाहिए, आज यहाँ ये होटल की सौगात मिली। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मालवा मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में बदला। ऐसे समय में हमारे MR10 के पास की सौगात निश्चित रूप से नया माइलस्टोन होगी।
0: खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में शाम 7 बजे से शुरू होगा। सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले और उनके साथी गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। भोपाल में आयोजित MP ऑनलाइन आइडिया एंड इनोवेशन हैकाथॉन के समापन समारोह में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि युवाओं को उद्योगपतियों और निवेशकों से जोड़ना चाहिए, इससे उन्हें स्टार्टअप शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने के अवसर मिलेंगे। 2 दिवसीय हैकाथॉन में देश भर के 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों और 300 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। टेक्निकल कैटेगरी में भोपाल की टीम एक्जियोम 4 ने पहला और नॉन टेक्निकल कैटेगरी में भोपाल की टीम जेनेक्स ने पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक प्रदेश में करीब 4 लाख फॉर्म 6 जमा किए गए हैं। इनमें 18 से 19 साल के युवाओं के करीब 1,92,000 फॉर्म भी शामिल हैं। पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में अलग अलग जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं नर्मदापुरम में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए जिले में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में CM हेल्पलाइन शिकायतों की अनदेखी पर L1 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने का नोटिस जारी किया गया है और रोजाना शाम को विभागीय समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी में फसलों की कटाई के बाद अवशेष यानी नरवाई को जलाने पर कलेक्टर ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और झाबुआ में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में आदर्श महाविद्यालय की टीम विजेता रही। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया

0: प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
3: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है,

0: बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
0: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलिचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके। सके और एक समृद्ध समावेशी नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में यह बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। शुरुआत करते हैं हेमंत कुमार की आवाज का एक गीत से, जिसको हमने लिया है फिल्म 20 साल बाद से। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है और संगीत हेमंत कुमार का ही है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है भालचंद्र साहू, संतोष साहू बीना से, राजेश साहू, खिलान साहू, सुमित शर्मा, शांति शर्मा, प्रेम भाई साहू, अजय साहू, राज साहू और गंजबासुदा से, राजेंद्र नगर गंजबासुदा से इन्होंने ये पत्र लिखा है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, इन्होंने ये खत लिखा है छबड़ा राजस्थान से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। और ये खत है शिवानी चौक राजम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंटरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लांबी लबी श्रीवास्तव ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारका प्रसाद शर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म ज़माने को दिखाना है। इस फिल्म से आवाज़ें हैं आयशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, पद्मनी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर और साथियों की। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण धुर खर्चे और शिवाजी चौक कटनी। शिवाजी चौक कटनी से इन्होंने लिखा है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, मोना, सोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा ने। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है बनिया पारा धमतरी से। लिखने वाले हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। इसी गाने के लिए हमारे पास में ये खत है गौरीनगर इंदौर से। लिखने वाले हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। सुनते हैं ये गीत।

0: अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अमानुष फिल्म का, आवाज़ किशोर कुमार की है, इंदिवर का लिखा हुआ है, श्याम मित्रा का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में ख़त आए हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ज़िला बुरहानपुर ग्राम मोहद से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज़ रोज़मीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजू बाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। इसी गाने के लिए हमारे पास में ख़त आया है पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और ये खत है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, असमा, सालिया, शोएब खान, साइमा, मुश्तबा, आफिया खान, रऊफ खान, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं ये गाना।
1: न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया।

अगर से तिलक राना मीना राना मोनिका नूपुर ऋषिका और रॉबिन। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी की। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके साथ ही। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है मुकाम हिपर सोगा, तालुका ओसा, ज़िला लातूर से, लिखने वाले हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर शेख फैज़ नबी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम बी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शकील, बिस्मिल्ला बी, गदर शेख, नीलोफर शेख और उनके परिवार के बहुत सारे साथी। सुनते हैं ये गाना।

से अभिजीत गायकवाड़, सरिता गायकवाड़, एकांश गायकवाड़, श्वेता, सुमित गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रणेता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़, आकार हाइट बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है पालदा नागा इंदौर से हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी ने। सुनते हैं ये गाना।

जी चाहता है। इस फिल्म में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में एक गाना। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र।

0: डर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना है।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को समावेशी तकनीक का उदाहरण बताया। उन्होंने विदेशी मेहमानों से इसे आजमाने की अपील की और कहा कि देश में सड़क किनारे सामान बेचने वाले से लेकर कार शोरूम तक सभी एक ही डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके अनुभव से उत्तराखंड की प्रगति को फायदा मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय संयुक्त कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार, किसान संगठनों, शुगर मिलों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। इंदौर में ताज विवांता होटल के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इससे इंदौर और मालवा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और नए निवेश से रोजगार के अवसर भी आगे बढ़ रहे हैं। खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित दो दिवसीय इस समारोह में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मान दिया जाएगा। और भोपाल में आयोजित एमपी ऑनलाइन आइडिया एंड इनोवेशन हैकाथॉन के समापन समारोह में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि युवाओं को उद्योगपतियों और निवेशकों से जुड़ना चाहिए, इससे उन्हें स्टार्टअप शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने के अवसर मिलेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आइए हम आपको बता दें आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर। एनसीईआरटी के प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:00। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत।

किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं 7:30 पर। विशेष कार्यक्रम जन सेवा देश सेवा आप सुन सकते हैं 8:00। 8:35 पर आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं और 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। इसमें आप सुनेंगे महफिल समा कव्वालियों पर आधारित ये कार्यक्रम। रात 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत कुमार लाल मिश्र का तबला वादन। ताल होगी 3 ताल और रूपक ताल। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। अब हमारा कुछ देर के लिए मीडियम वेव पर प्रसारण बंद होता है। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5:00 से आप मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। सुगम संगीत लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं प्रभुलाल मालवीय और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे नरेंद्र चंचल के गाए गीत। शुरुआत करते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम से।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत में आपने सुना नरेंद्र चंचल की आवाज में भजन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

पवित्र गंगा इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फारूक कैसर ने इस गाने को लिखा था और एम रंग राव और दिलशाद कमल का संगीत था। और अगला गाना हमने लिया है मुकेश की आवाज़ में और फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम। मुकेश के साथ में दूसरी आवाज़ है आशा भोसले की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है, उषा खन्ना का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म फांसी से। आवाज़ें हैं सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफ़ी की। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आदमी सड़क का फिल्म का गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी के, वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है, रवि का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच की ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले 6 महीनों के दौरान माल ढुलाई और यात्री दोनों क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में 6.14% की वृद्धि दर्ज की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 1 सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय संयुक्त कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों, किसान संगठनों, शुगर मिलों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। खंडवा जिले में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय इस समारोह में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। भोपाल में अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव के चलते आज से 17 अक्टूबर तक भेल दशहरा मैदान के आसपास ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है और प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर को ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 9 जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम शब्द सागर। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता सेवा संकल्प अभियान मिशन लाइफ डॉक्टर शालिनी मिश्रा से, और साथ ही आप सुनेंगे काव्य पाठ डॉक्टर चित्रा सिंह से, और आखिर में नुसरत फतेह अली खान के गाने।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका संबंध केवल हमारे पर्यावरण से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारी संस्कृति, हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी है। विषय है मिशन लाइफ, अर्थात लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आइए अपनी बात की शुरुआत हम कुछ सरल प्रश्नों से करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि सुबह उठते ही जब हम ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं तब पानी कितना बर्बाद हो जाता है? क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि कमरे से बाहर निकलते समय जलता हुआ बल्ब और चलता हुआ पंखा कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है कि खरीदारी के बाद घर में जमा होने वाली प्लास्टिक की थैलियां और अनावश्यक वस्तुएं फेंकने पर हमारे पर्यावरण पर कितना

बोझ डालती हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग प्रतिदिन ऐसी छोटी छोटी गलतियां दोहराते हैं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि करोड़ों लोग अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन लाएं तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा बदलाव संभव है। और इसी सोच को जन आंदोलन का रूप देने वाला एक महत्वपूर्ण अभियान है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का पूरा नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, मिशन लाइफ अर्थात जीवन के लिए जीवन भर चलने वाली एक योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2021 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP26 के जलवायु सम्मेलन में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था और दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में स्टैचू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन पर इस मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन लाइफ की आवश्यकता के बारे में कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को कम करने के लिए दुनिया भर को एकजुट होकर मिशन लाइफ को अपनाने की आवश्यकता है और इस कार्य की शुरुआत के लिए गुजरात को चुनने के पीछे मोदी जी ने कहा कि यही वह राज्य है जहां नवीनीकरण ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा के काम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम हो और विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। मिशन लाइफ का मूल विचार बहुत सरल है, प्रकृति को बचाने के लिए केवल दूसरों से बदलाव की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने जीवन में भी बदलाव लाना होगा। यह अभियान हमें उपभोग और संसाधनों के उपयोग के प्रति जागरूक बनाता है। इसका संदेश है कि हम आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का उपयोग करें, अनावश्यक बर्बादी से बचें और अपनी दैनिक आदतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। मिशन लाइफ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है नागरिकों को प्रो प्लैनेट पीपल बनाना, अर्थात ऐसे जागरूक नागरिक जो अपने व्यक्तिगत निर्णयों में भी पृथ्वी और पर्यावरण के हित का ध्यान रखें। आइए अब हम बात करते हैं आज मिशन लाइफ की आवश्यकता क्यों है। आज विश्व जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, जल संकट, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसी अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। बदलते मौसम, भीषण गर्मी, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव भी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि विकास का हमारा वर्तमान तरीका कितना टिकाऊ है। अर्थात हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी के संसाधन असीमित नहीं हैं। पानी, ऊर्जा, वन, उपजाऊ मिट्टी और स्वच्छ हवा हमारे जीवन के आधार हैं। यदि हम इनका उपयोग बिना सोचे समझे करते रहेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इनकी उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित हो सकती हैं। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ विकास को रोकना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विकास करना जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण हो सके। पर्यावरण संरक्षण केवल जंगल जीवों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे घर, रसोई, कार्यालय, बाजार और उपभोग की आदतों से भी जुड़ा हुआ है। मिशन लाइफ के 7 प्रमुख विषय हैं। पहला विषय है ऊर्जा बचाना, अर्थात ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा हमारे आधुनिक जीवन की आवश्यकता है। घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और परिवहन में भी ऊर्जा का व्यापक उपयोग होता है, लेकिन ऊर्जा की बचत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आवश्यकता न होने पर बिजली से चलने वाले उपकरणों को हम बंद रखकर ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, ऊर्जा कुशल उपकरणों का चयन कर सकते हैं और जहां तक संभव हो प्राकृतिक रोशनी और हवा का उपयोग भी कर सकते हैं। मिशन लाइफ का दूसरा विषय है जल संरक्षण, पानी बचाना। जल ही जीवन है, यह वाक्य हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हमें तभी समझ में आता है जब किसी क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। भारत के अनेक क्षेत्रों में जल उपलब्धता और भूजल संरक्षण महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग और जहां उपयुक्त हो वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना भी पानी बचाने के व्यावहारिक उपाय हैं। मिशन लाइफ का तीसरा विषय है

0: कचरा कम करना अर्थात जीरो वेस्ट। आज उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ कचरे की मात्रा एक गंभीर विषय बन चुकी है। हम अक्सर आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीद लेते हैं और उपयोगी होने के बावजूद उन्हें फेंक देते हैं। मिशन लाइफ हमें सोच समझकर खरीदारी करने और वस्तुओं का अधिकतम उपयोग करने की प्रेरणा देता है। हम घरों में भी गीले और सूखे कचरे को अलग करके रख सकते हैं। रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे से जहाँ उचित व्यवस्था हो खाद बनाई जा सकती है। हमें खरीदारी करते समय स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, क्या मुझे इस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता है? यह प्रश्न हमें अनावश्यक उपभोग से बचा सकता है। मिशन लाइफ का चौथा विषय है ई कचरे को कम करना। आज मोबाइल फोन, लैपटॉप, चार्जर, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तकनीकी ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, लेकिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अनुचित निपटान पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार हम केवल नया मॉडल आने पर अपना पुराना मोबाइल बदल देते हैं, जबकि पुराना उपकरण अभी भी उपयोग किया जा सकता है। हमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए, जहां संभव हो उनकी मरम्मत करानी चाहिए और खराब उपकरणों और बैटरियों को अधिकतर ई कचरा संग्रह केंद्रों या पुनर्चक्रण व्यवस्था तक पहुँचाना चाहिए। मिशन लाइफ का पांचवा विषय है एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहना। प्लास्टिक ने कई क्षेत्रों में उपयोगी भूमिका निभाई है, लेकिन एक बार उपयोग करके फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती हैं। प्लास्टिक का कचरा नालियों, नदियों और अन्य जल स्रोतों तक पहुंच सकता है और पशुओं और जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। हम बाजार जाते समय कपड़े या अन्य टिकाऊ सामग्री का थैला भी ले जा सकते हैं। साथियों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसको यदि हम जलाते हैं तो भी वो हानिकारक गैसें देता है और हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, ओजोन लेयर को और डिलीट करता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक के सभी विकल्प हर परिस्थिति में समान रूप से पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, इसीलिए वस्तुओं का बार बार उपयोग करना, उचित विकल्प चुनना और कचरे का सही तरीके से निपटान करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिशन लाइफ का छठवां विषय है टिकाऊ खाद्य प्रणालियां अपनाना। भोजन हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है, लेकिन भोजन का उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बर्बादी भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हम अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितना खा सकें। भोजन को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करें, बचा हुआ भोजन उचित ढंग से उपयोग करें और खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने का प्रयास करें। एग्रोफॉरेस्ट्री एक ऐसा विषय है जो हमारे मिशन लाइफ को बहुत अधिक संबल प्रदान करता है। मिशन लाइफ का सातवां विषय है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। पर्यावरण संरक्षण और हमारा स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैदल चलना, छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करना, जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन अपनाना और नियमित शारीरिक गतिविधि करना व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ कुछ परिस्थितियों में प्रदूषण और ऊर्जा की खपत भी कम करने में सहयोग दे सकता है। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताना, स्वस्थ आदतें विकसित करना मिशन लाइफ का एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, पृथ्वी केवल वह स्थान नहीं है जहां हम रहते हैं, यह हमारा घर है, हमारी जीवन रेखा है और आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य विरासत है। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, लेकिन यह भविष्य तभी सार्थक होगा जब उन्हें स्वच्छ हवा, पर्याप्त पानी, उपजाऊ मिट्टी और संतुलित प्राकृतिक वातावरण भी उपलब्ध होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें हमेशा किसी बड़े अभियान या विशेष अवसर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसकी शुरुआत आज, अभी और अपने घर से कर सकते हैं। याद रखिए, प्रकृति हमारी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं। इसीलिए आइए उपभोग के स्थान पर विवेकपूर्ण उपयोग को, बर्बादी के स्थान पर संरक्षण को और केवल व्यक्तिगत सुविधा के स्थान पर सामूहिक जिम्मेदारी को महत्व दें। मिशन लाइफ का संदेश स्पष्ट है, जीवन शैली में छोटा सा बदलाव भी सकारात्मक दिशा में एक कदम हो सकता है। तो आइए हम सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बने, अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान दें। क्योंकि जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्रेम। प्रेम आया था इस बार फिर पंचांग के हिसाब से। प्रेम आया था इस बार फिर पंचांग के हिसाब से, नियत दिन और तिथि के अनुसार। वसंत छा रहा था सब और, सरसों के फूलों सा था चटकीले पीले रंग का उसका चेहरा। मेरी किताब के पन्नों के बीचों बीच फंस गया था वह। अक्षर उन दिनों चलने लगे थे अपने आप इधर उधर। हवा कभी गर्म कभी ठंडी, भीतर कभी उजला कभी अंधेरा सा हो जाता था। काले बादल उन दिनों छिप गए थे जाने कहाँ। धूप भी लग रही थी तारों की चादर सी। चांद जैसे सज गया था माथे पर आकर मेरे। बीता वसंत, पीली सरसों, चांद, बादल, धूप, तारे बैठ गए वापस अपने अपने घरों में। किताब के वे अक्षर मेरे जाने क्यों लौटे नहीं वापस अब तक। अगली कविता उम्मीद। उम्मीद के दरवाजे बंद हो गए हैं। उम्मीद के दरवाजे बंद हो गए हैं, ताले पड़ गए हैं उनमें दूरियों के। इंतजार की एक खिड़की खुली है अब तक, जहां से आती है धूप, हवा, बारिश और तुम्हारी याद। अगली कविता का शीर्षक है मौसम। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का। धरती का क्या है, धरती का क्या है, वो तो बिछी है उसके इंतजार में। उसके बस का कुछ नहीं, न धूप, न कोहरा, न बारिश। मौसम के हवाले हो चुकी है धरती पूरी की पूरी। अगली कविता किसी के रहने न रहने से नहीं रुकती किसी की दुनिया। किसी के रहने न रहने से नहीं रुकती कभी किसी की दुनिया। एक विराम सा हो जाता है बस। दिन चुप्पी साध लेते हैं कुछ दिनों। जीवन की गति कुछ शिथिल सी पड़ जाती है पर थमती नहीं क्षण भर को। पर थमती नहीं क्षण भर को। अचानक फिर एक दिन जीवन चलने लगता है पहले से तेज और तेज। दिन अपना मौन तोड़कर बतियाने लगते हैं इधर उधर, क्योंकि जीवन में नहीं होता कुछ और कभी भी जीवन से बढ़कर। टूटता है जब कोई सुनहरा सपना। टूटता है जब कोई सुनहरा सपना और रह जाती हैं केवल उसकी परछाइयाँ। तब रह रह कर सालती हैं वे। टूटता है जब कोई सुनहरा सपना और रह जाती हैं केवल उसकी परछाइयाँ। तब रह रह कर सालती हैं वे। पर मन कब मानता है टूटे हुए सपने का टूटना। पर मन कब मानता है टूटे हुए सपने का टूटना। वह तो देखा ही करता है हर एक क्षण उस सपने को। अगली कविता उदासी। उदास सी सुबह, तपती सी दोपहर, सूनी सी शाम, रोज कुछ इसी तरह आती है जिंदगी। उदास सी सुबह, तपती सी दोपहर, सूनी सी शाम, रोज कुछ इसी तरह आती है जिंदगी। रात होते होते तक बिस्तर पर ढेर हो जाती है जिंदगी। बस एक उदास सी सुबह, तपती सी दोपहर, सूनी सी शाम का बोझ लिए रात के इंतजार में जागती सी जिंदगी। एक और छोटी सी कविता। अपना ही लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा। अपना ही लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा। मिटाया भी तो नहीं जा रहा जो लिख दिया गया है एक बार। कविता का शीर्षक है सपनों का हरा होना। कुछ सपने जो झुलस गए थे बीते मौसम की उमस और तपिश में कुछ सपने जो झुलस गए थे बीते मौसम की।

उमस और तपिश में पानी की सतह को सड़क बना कागज की नाव के पैरों से चलकर आ पहुँचे हैं मेरे घर की दहलीज पर। मैं उन सपनों को मन के आंगन में रोप रही हूँ, मैं उन सपनों को मन के आंगन में रोप रही हूँ, जैसे तय होता है बारिश का होना, ठीक उसी तरह धूप में मुरझाए सपनों का हरा होना भी। एक और छोटी कविता है, टूटा हुआ सपना। टूटे हुए सपने से खुली सुबह फिर आँख, टूटे हुए सपने से खुली सुबह फिर आँख, सपना आज फिर चुपता रहा दिन भर। एक और छोटी सी कविता है, वह जो सिर्फ एक पन्ना था किताब का, वह जो सिर्फ एक पन्ना था किताब का, पढ़कर उलट दिया है उसे अभी अभी, पढ़कर उलट दिया है उसे अभी अभी, अनगिनत पन्ने पढ़ने को अभी और हैं बाकी। अगली कविता का शीर्षक है चुप्पी। चुप्पी घृणा के विरोध में खड़ा सबसे धारदार शस्त्र है, चुप्पी घृणा के विरोध में खड़ा सबसे धारदार शस्त्र है, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोला जाना भी चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोला जाना भी चाहिए, वरना तुम्हारे समर्थन में खड़ा सच निहत्था ही मारा जाएगा। एक छोटी सी कविता है याद, जिसका शीर्षक है, हर याद की भी एक मियाद होती है, हर याद की भी एक मियाद होती है, और मियाद निकल जाने के बाद वह याद फिर किसी काम की नहीं रह जाती। अगली कविता है पेड़। मैंने एक मजबूत पेड़ से बांध दिए हैं अपने सारे दुख, मैंने एक मजबूत पेड़ से बांध दिए हैं अपने सारे दुख, और सींचती हूँ हर रोज़ उसे, जानती हूँ कि पेड़ रहेगा जब तक हरा भरा, मेरे दुखों के चेहरे भी कभी नहीं मुरझाएंगे। एक और छोटी सी कविता, खुशियाँ। खुशियाँ खेल रही हैं बाहर गिल्ली डंडा, खुशियाँ खेल रही हैं बाहर गिल्ली डंडा, उदासी खोज रही है चाबी सूनी तिजोरियों की। एक और कविता है छोटी, उदासी आज फिर देर तक बैठी रही पास, उदासी आज फिर देर तक बैठी रही पास, कैलेंडर से तारीखें खुद ब खुद उठकर चली गईं कुछ दिन पीछे, दीवारों पर टंगी तस्वीरों के चेहरे लगे मुस्कुराने, आज फिर देर तक मैंने सोचा तुम्हारे बारे में। एक और कविता, हमारे मन अतृप्त इच्छाओं के तहखाने हैं, हमारे मन अतृप्त इच्छाओं के तहखाने हैं, मैं रोज़ सुबह नंगे पाँव जिसकी धूल भरी सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, मैं अपनी उन इच्छाओं के शरीर को किसी बूढ़े पेड़ की जटाओं में बांधकर नहीं लटकाती, ना ही पर्ची पर लिखकर आलेदान में रख उन्हें उन पर दिया जलाती, मेरी दैनिक प्रार्थनाओं में भी कभी मेरी किसी अधूरी इच्छा ने अब तक नहीं लिया कोई हिस्सा, मेरा मजबूत मन हर रोज़ अपनी एक इच्छा की बाह पकड़कर प्रवाहित कर देता है उसे जल में, और हो जाती हूँ मैं खुद ब खुद तृप्त। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 12वीं कड़ी।

आज सवेरे से ही गांव में हलचल मची हुई है। कच्ची झोपड़ियां हस्ती जान पड़ती हैं। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। कुदई चौधरी के द्वार पर चंदोबा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों

0: उमंग है, हौसला है, आनंद है। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वो है नोहरी बुढ़िया। वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से ये समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कुदई के द्वार पर जाए और कहे,
1: मैं ये लाई हूं।
0: वो तो दानों को मोहताज है। नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज्य था। कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा, लेकिन वो सब कुछ विधाता ने हर लिया। अब न धन रहा न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए केवल वही बाकी थी। आंखों से सूझता नहीं था, कानों से सुनाई नहीं देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। और उधर कोदई के भाग उदय हो गए थे। आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नौहरी को अब कौन पूछेगा, ये सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा।
1: हाय, अगर भगवान ने मुझे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़ों को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, एक कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियां बनवाती, और जब सब लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए उनकी भेंट कर देती।
0: उसे वो दिन याद आया जब वो अपने बूढ़े पति को लेकर यहां से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वो उत्साह, वो सात्विक प्रेम, वो श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी।
2: भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है।
0: नौहरी ने चौधरी को कटार भरी हुई आंखों से देखा।
1: निर्दयी मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जो कुछ देना है वो उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं?
2: हम किसी से कहें ये नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वो पुनारी हाली, अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाश कैसे रहेगी?
1: जले पर नमक न छिड़को देवर जी, भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना ना पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत जोगी जति हाकिम सूबा सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते।
2: भाभी, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम ये ना कहने लगो कि मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं।
0: ये कहता हुआ कोदई चला गया। नौहरी अभी बैठी ही थी कि शोर मचा, जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राज रत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छाड़ कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई थी, मानो स्वराज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। दो दो आदमियों की कतारें थी। हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज का आलिंगन करने को तैयार हो। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों की हवा कर रहे थे। इस समारोह में नौहरी की और किसी का ध्यान न गया। वो अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वो कोई रानी हो, मानो ये सारा गांव उसका है। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी ना किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही अपने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वो एक पल अनुरक्त आंखों से आजादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को

0: अपने अंदर भर रही हो। तब वो नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नवयुवना प्रेम और उल्लास के मत से विवल होकर नाचे। लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए, छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वो बुढ़िया अपना नृत्य कौशल दिखा रही थी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वो अपना सारा दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहां सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहां ना जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहां से आ गई। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं, और फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है।
1: बस करो भाभी, बस करो।
2: देवर जी, जरा देखूं तो कैसा नाचते हो।
1: अब बुढ़ापे में क्या नाचूं भाभी?
2: अरे मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती? हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो उन्होंने ये प्राण लिया है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां घुड़कियां सुनी है। अब तो उस जोर जुलम का नाश होगा। हमारा और तुम्हारा क्या अभी बूढ़ा होने का योग है? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो, ईमान से कहो, यहाँ कितने आदमी हैं जिसने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? घी किसी को सूंघने को मिला है?
3: नहीं,
2: क्या
3: नहीं,
2: कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपया देते थे, अब उसी के 2 रुपया देते हो? क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सहकर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले के दिनों का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं। और तो सभी हमें पीस कर हमारा रक्त निकालना जानते हैं।
0: यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे। कोदई के द्वार पर मशालें जल रही थी, कई गांवों के आदमी जमा हो गए थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा,
4: भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया, उससे हमें ये आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजर्बे से कहता हूं कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्म बुद्धि है, वो संसार के और किसी भी देश में नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता हैं, देवता। आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, ये आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है।
5: लेकिन भैया, सीधापन तो गुण कहलाता है।
4: घूरेलाल, मैं समझाता हूं, बुरा ना मानिएगा। आप लोग इस संसार में रहने के योग्य ही नहीं।
6: काहे भैया, क्यों?
4: अरे आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बहता जाता है और आप चू भी नहीं करते। अंग्रेजों के हमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं और आप जवान तक नहीं हिलाते। भाइयों, इसका नतीजा यह हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं और आपको खबर ही नहीं है। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काट कर कपड़े बुनकर गुजारा करते थे और अब सारा कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यहीं इसी देश में नमक बनाते थे और अब नमक बाहर से आता है। यहां नमक बनाना जुर्म है, पर आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ

0: लिए देते हैं।
1: 8 करोड़ रुपए?
0: आपके उसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है और आप उसे छू भी नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी कर लग जाए।
2: अरे नहीं बाबा नहीं।
0: बोलिए भाइयों, बोलिए, क्या आप अब भी ये अन्याय सहते रहेंगे?
3: नहीं।
4: लेकिन भैया हम किस लायक है?
0: भाई सेवाराम, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। हाँ, आप ही की गर्दन पर। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। ये समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बनकर रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जान हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वो कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए?
1: सही बात है।
0: वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए, जरा सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे?
2: हाँ, करेंगे।
0: मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को ही कोसते रहेंगे? बोलिए।
1: हम लोग साथ हैं।
0: ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। साथियों, हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, क्या आप सब मदद कर सकते हैं?
5: कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस का दरोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए जगह खोजने लगे।
6: मार कर भगा दो इन बदमाशों को।
5: कांस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, मगर इससे पहले कि वे किसी पर हाथ चलाएं, सभी लोग फुर्र हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से भागा, भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहां गांव का एक भी आदमी नहीं रहा। हां, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए स्थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे।
6: क्यों रे कोदैया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहां?
5: कोदई ने लाल लाल आंखों से दरोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज अगर उनके सिर गृहस्थी का बखेड़ा ना होता, लेना देना ना होता, तो वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए थे, वो इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई जवाब ना दिया था। नौहरी पीछे से आकर बोली,
7: क्या लाल पगड़ बांधकर तुम्हारी जी बैठ गई है? कोदई क्या तुम्हारा गुलाम है कि कोदैया कोदैया कर रहे हो? अरे, हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती?
5: दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया।
6: कोदई, कौन है ये शैतान की खाला? खुदा का खौफ ना होता तो इसकी जुबान तालू से निकाल लेता मैं।
7: अरे क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं, जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरते। जानते हो कि ये लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? ये वो लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तुम इन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गरम करते हो और अंग्रेजों की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम उन्हें बदमाश कहते हो।
5: नहरी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दुबक गए थे फिर जमा हो गए। दरोगा ने देखा भीड़ बढ़ती ही जाती है तो अपना

0: एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया दो तीन कदम पर औंधे मुंह गिर जाती कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया और बोला,
1: क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्तों पर वार करते हो, ये मर्दों का काम नहीं है।
2: अरे मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? आदमी इतना भी निर्दयी हो सकता है भला? अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उसका राज है, मगर तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कोई हुक्म दे तुम दूसरों की गर्दन भी काट लोगे।
3: ए, तुम किसके हुक्म से गांव में आए हो?
4: खुदा के हुक्म से।
3: तुम रियाया के अमन में खलल डालना चाहते हो?
4: अगर रियाया को उनकी असली हालत बताना उनके अमन में खलल डालना लगता है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं।
0: भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा,
5: भाइयों, इस वक्त कई गांव के आदमी यहां जमा हैं। दरोगा ने हमारी जैसी बेआबरूई की है, क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार भी डाले जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, यह है हमारी इज्जत और आबरू। दिदकार है ऐसी जिंदगी पर।
0: समूह स्थिर खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेड़ से रुक जाए। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था एकाएक हट गया, उनके चेहरे कठोर हो गए। दरोगा ने उनके तेवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
5: मैं कहीं नहीं भागूंगा, कहीं नहीं भागूंगा। चलो, कहां ले चलते हो? चलो।
0: ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके।
3: दूर हटो इससे, दूर हटो, हट जा, नहीं तो गोली चला दूंगा। हटो।
6: अरे जा जा।
3: भारत माता की
7: जय।
3: भारत माता की
7: जय।
3: भारत माता की
7: जय।
0: दरोगा ने देखा अब जान बचती नजर नहीं आती, नम्रता से बोला,
8: नायक साहब ये लोग तो फसाद पर आमादा है, देखिए इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।
4: नहीं दरोगा जी, जब तक हम में से एक आदमी भी यहां रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ ना उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम और आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं। भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूं कि यह न्याय और धर्म की लड़ाई है। दरोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है, मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूं। धन्य हैं वे लोग जो आजादी की लड़ाई में सजा पाएं। ये बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है। भाइयों, कृपया आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें।
3: चलो कोदई।
0: दोनों लड़के आंखों में आंसू भर लाए और कातर स्वर में बोले,
9: हमें क्या कहे जाते हो दादा?
5: भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वो करना जो मर्दों को करना चाहिए।
0: गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ा जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ नहीं कर सके। अब वे मुंह दिखाएं तो कैसे दिखाएं? हर एक मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया हो। सहसा नौहरी ने चिल्ला कर कहा,
2: अब सब जने खड़े क्यों पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा या अभी भी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है।

0: आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते।
1: कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला,
2: हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी, हमारे जीवन को धिक्कार है। अभी तो हम हैं तुम्हारे बालक, मैं चलता हूँ उधर, मेरे पीछे खेतीबारी गंगा देखेगा।
1: गंगा उसका छोटा भाई था, बोला,
3: नहीं नहीं भैया, तुम ये अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। अरे तुम रहोगे तो गृहस्थी संभलेगी, मुझसे तो ये कुछ होगा नहीं, मुझे जाने दो भैया।
2: देखो गंगा, इसे काकी पर छोड़ दो, इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, जिसे काकी का हुकुम हो वो जाए।
0: भाई जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी।
2: क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा।
0: अरे चलो रहने दो, अरे मरते समय राज मिला है तो सोचा भी कुछ कमा लूं।
3: अरे मैं तुम्हें घोस दूंगा काकी, हाँ अब की बाजार जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए पूर्वी तंबाकू का पत्ता लाऊंगा। हाँ।
0: तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना।
2: देखो काकी, तुम न्याय नहीं कर रही हो।
0: अरे अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे?
3: हाँ ये तो है।
1: गंगा ने नौहरी के चरण छुए, फिर भाई के गले मिला और बोला,
3: कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ।
4: अब मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम।
5: महात्मा गांधी की जय।
6: महात्मा गांधी की
5: जय।
6: महात्मा गांधी की
5: जय।
7: मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह।
4: अरे भजन सिंह, तुम नाम लिखवा रहे हो?
7: सेवाराम, तुम सरकार के मुलाजिम होते हुए भी नाम लिखवा रहे हो तो हम तो पहलवान है भाई, पहलवान।
8: अरे भजन सिंह, तुम्हें कौन नहीं जानता, 5-10 गांव में तुम्हारे जोर का कोई पहलवान नहीं है। भाई मेरा भी नाम लिखो, घूरे लाल।
7: तुम तो गांव के चौकीदार हो।
4: हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी अपना नाम लिखवाओगे।
8: भैया 20 साल हो गए गुलामी करते करते, अब थक गया हूँ।
6: महात्मा गांधी की
5: जय।
6: महात्मा गांधी की
5: जय।
6: महात्मा गांधी की
5: जय।
1: भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया।
7: मेरा नाम भजन सिंह है, 10-5 गांव में पहलवानी के लिए मशहूर हूँ। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अंग्रेजी सरकार को पटक कर ही दम लूंगा। हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूं बिल्कुल। हाँ।
1: अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए भजन सिंह नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया।
8: मेरा नाम लिखो, घूरे।
1: ये गांव का चौकीदार था, लोगों ने सिर उठा उठा कर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास ना आता था कि घूरे भी अपना नाम लिखवाएगा।
7: अरे तुम्हें क्या हुआ घूरे लाल, क्या 20 साल तक गुलामी करते करते थक गए?
4: नायक भैया मेरा नाम भी लिखो, काले खां।
1: काले खां जमींदार का आदमी था, उसका काम लठ के जोर से कर्जा वसूलना था। वो बड़ा ही जाबिर और दबंग था, उसके नाम लिखाने पर लोगों को आश्चर्य हुआ।
9: काले खां,
2: मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों?
4: भैया जो आदमी भटकता रहे क्या उसे कभी सीधे रास्ते पर आने का समय नहीं मिलेगा?
9: हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो।
4: अब जिसका नमक खाता था उसका हुकुम बजाता था,
9: ये बात तो सही है।
4: अब मालूम हुआ कि मैं बड़ी भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है,
9: बिल्कुल सही कह रहा है।
4: मैं हाथ जोड़कर तुम सब से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो और मुझे भी अपने साथ ले लो।
1: पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे और चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो। और वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृत्ति मात्र है, ज्यों ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है, व्यवस्था और संगठन तो गौण है। नायक ने अपने सेवकों को संबोधित करते हुए कहा,
10: मित्रों

0: आज आप आजादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपको मालूम है कि हम किस तरह की लड़ाई करने जा रहे हैं? भाइयों, आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की जाएंगी, तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध भी त्याग दीजिए।
1: बिल्कुल सही कह रहे
0: हैं। हम सब धर्म संग्राम में जा रहे हैं और हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। बोलिए भाइयों, आप लोग इसके लिए तैयार हैं?
2: तैयार है।
3: उस सुहावने सुनहरे प्रभात में जैसे उमंग खुली हुई थी, समीर के हल्के हल्के झोंकों में प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूंज उठा।
4: हम सौराज जी कहाँ चले?
5: अंग्रेजों की जेल में।
4: हम सौराज जी कहाँ चले?
5: अंग्रेजों की जेल में।
4: हम सौराज जी कहाँ चले?
5: अंग्रेजों की जेल।
3: सहसा नोहरी लाठी टेकते हुए आकर खड़ी हो गई।
6: काकी, हमें आशीर्वाद दो।
7: मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे?
8: काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? काकी,
7: अरे भैया, जाने के तो अब दिन ही हैं। आज ना जाऊंगी, दो चार महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। दो चार महीने खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। इतने बालक हैं, इनकी सेवा करने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान करे तुम लोगों के सुदिन आए और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा सुख देख लूं।
8: मत जाओ काकी, काकी।
3: ये कहते हुए नौहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गांव से जा रहा था।
4: हम सौरा जी कहाँ चले?
5: अंग्रेजों की जेल में।
4: हम सौरा जी कहाँ चले?
5: अंग्रेजों की जेल में।
4: हम सौरा जी कहाँ चले?
5: अंग्रेजों की जेल में।
3: नोहरी के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। उसे लग रहा था जैसे विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हो।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 12वां भाग डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते सुरक्षा और तकनीकी परिदृश्य से नई और जटिल चुनौतियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें बेहतर तैयारी, रणनीतिक दूरदर्शिता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल उमरिया जिले के गुरुवाही में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इससे प्रदेश की करीब 1,25,00,000 पात्र महिलाओं के खातों में 1,500-1,500 रुपये की किस्त के हिसाब से राशि पहुंचेगी। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले 6 महीनों के दौरान माल ढुलाई और यात्री दोनों क्षेत्रों में निरंतर

दर वृद्धि दर्ज की है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में 6.14% की वृद्धि दर्ज की है। और खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए आज यह सम्मान दिया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

ख्वाबों को पंख लगाए तो उड़ान बन जाती है, मेहनत से जो आगे बढ़े उनकी अलग पहचान बन जाती है। नई सोच, नई उमंग और कुछ कर दिखाने की रवानी, इन्हीं रंगों से सजी है हमारी युववाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना। तो चलिए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं कुछ सुरीले नगमों के साथ। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दोस्ताना से, शंकर महादेवा और सुनिधि चौहान की सुरीली आवाज़ में।

दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपदा हमारे सामने आ जाए, जैसे भूकंप, तेज बाढ़ या कोई चक्रवात, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आपदा को आने से रोकना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना निश्चित रूप से हमारी तैयारी और जागरूकता पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपदा से निपटने के महत्व को जन जन तक पहुँचाने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को आपदाओं के संभावित खतरों के प्रति जागरूक करना और उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से ही तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन और आग जैसी आपदाएँ कभी भी सामने आ सकती हैं। ऐसी समय पर घबराने की बजाय सही जानकारी और तैयारी बहुत काम आती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मतलब केवल आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्य करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपदा आने से पहले ही संभावित खतरों को पहचानना, सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखना, जरूरी दस्तावेज और आपातकालीन सामान तैयार रखना, साथ ही परिवार के सदस्यों को सुरक्षा के उपायों की जानकारी देना। इसमें प्रशासन और बचाव दल के साथ साथ आम नागरिकों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी छोटी सी सावधानी और सही समय पर उठाया गया कदम किसी बड़ी परेशानी को रोकने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आप खुद भी जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें, क्योंकि आपदा के बाद राहत से बेहतर है आपदा से पहले की तैयारी। तो सुनते हैं अब कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत, फिल्म टशन से उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में।

दोस्तों कहते हैं कि इरादे अगर अपने हों तो रास्ते भी अपने बनाए जा सकते हैं। हुनर अपने हाथों में हो तो सपनों को भी हकीकत बनाया जा सकता है। और जब बात अपने हुनर, अपने देश और कुछ नया करने की हो तो एक पहल याद आती है, मेक इन इंडिया। जी हाँ, 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई मेक इन इंडिया अभियान, जिसका उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इस पहल के जरिए भारत में बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने और देश को दुनिया के एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है, नई तकनीक सीखने से लेकर अपने हुनर के दम पर कुछ नया करने तक। युवाओं के पास आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं, जरूरत है तो बस अपने हुनर को पहचानने

और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की। मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे होने के इस पड़ाव पर भारत की यात्रा मेड इन इंडिया से मेड फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है, यानी भारत में बने उत्पादों को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है या कुछ अलग करने का सपना है तो खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यही है मेक इन इंडिया की भावना, अपने हुनर से देश को मजबूत बनाना और भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाना। श्रोताओं, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म तारा रंपम से, के और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

साक्षरता वक्त चला है आज की रोजगार सूचना का। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL ने प्रशासनिक अधिकारी के लिए 321 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 है। इस भर्ती में जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों तरह के पद शामिल हैं। जर्नलिस्ट पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है और स्पेशलिस्ट पदों के लिए संबंध विषय में निर्धारित योग्यता होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। आप और अधिक जानकारी के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.nationalinsurance.nic.co.in पर देख सकते हैं। श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जब वी मेट से। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीतकार हैं प्रीतम और स्वर हैं मोहित चौहान के।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जरूरी बातों पर चर्चा हुई, आपको नई जानकारियां मिली और कुछ अच्छे गीतों का साथ रहा। उम्मीद है युववाणी कार्यक्रम के आज के सफर में आपको भी अच्छा लगा होगा। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म 30 मार खां से अभिजीत सावंत और प्रजक्ता शुक्रे की आवाज़ में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
3: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से। बेनी दयाल और शलमली खोलगड़े की आवाज़ें हैं, जयदीप सहानी के लिखे बोल, जिसे संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका फिर एक बार स्वागत है। ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से, जावेद अली की आवाज़, रजत अरोरा की शब्द रचना और संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अय्यंगर ने, विशाल और शेखर ने धुन बनाई, आवाज़ें हैं विशाल ददलानी और हमसिका अय्यर की। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, नीरज श्रीधर, मोनाली ठाकुर और बॉब की आवाज़ों में, समीर अनजान के लिखे बोल, राजेश रोशन का संगीत, फिल्म है क्रिश 3।

0: श्रोताओं, फिल्म क्रिश 3 के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
6: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उमरिया जिले के ग्राम गुरुवाही में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इससे प्रदेश की करीब 1,25,00,000 पात्र महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये की किस्त पहुंचेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं में निवेश से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है और जनता के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। और भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए ICC प्लेयर महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसे ज्ञान से

भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा, और आप सबसे हमारा निवेदन है उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से, और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। ये जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे, और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना, याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए, और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी, कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओं, 19वीं शताब्दी में फॉस्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी, और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा, या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया, और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा

रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
2: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
4: जवानों,
5: जी सर,
4: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
5: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
4: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
6: जी सर।
4: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
6: जी जनाब।
4: हथगोला हाथ में लो।

0: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
2: फेंको
0: फेंको जनाब।
3: अरे अरे ये क्या हुआ,
4: ये क्या हुआ?
3: अरे
4: बचो बचो बचो,
3: फट जाओ
4: सब, पीछे पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ,
3: तुम्हारा निकल रहा।
5: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
6: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
0: ये आदि क्या कर रहा है?
6: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
0: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
0: बहादुर सैनिक हो तुम।
5: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
7: Yes, come in.
9: Sir.
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
7: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
7: हाँ हाँ, कहो।
9: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
7: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
9: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
7: गो अहेड यंग मैन।
9: सर।
5: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
6: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
5: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
6: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
0: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
10: जी सर,
1: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
0: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
10: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
9: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे।

0: ताकि उनका ध्यान बंट जाए और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
1: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
1: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर!
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर!
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
1: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाज़ों में जयदीप सहानी के लिखे बोल, विशाल और शेखर का संगीत। फिल्म है सलाम नमस्ते।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गरम मसाला से। सोनू निगम के गाए इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और इसके बोल लिखे हैं समीर ने। आइए सुनते हैं।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में समीर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी से। इस गीत को आवाज़ें दी थी के और जयेश गांधी ने। संगीत था हिमेश रेशमिया का। श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है 10। पंछी जलोनवी के लिखे बोल और विशाल शेखर का संगीत।

0: फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का गीत अभी आप सुन रहे थे। सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता कक की आवाज़ों में समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। श्रोताओं, फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो, और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजाता थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती।
5: हाँ, खूब ही सही चीनो तुमने, जो वही लोक गीत है, और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
4: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
5: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
4: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
5: अरे चिट्ठी बिट्टी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
4: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
5: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो, 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से,
4: 9425702768।
5: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाए।
4: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।

0: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
3: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
2: सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:30 पर सुनिए किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर और रात्रि 10:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर होगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज 10:30 पर आप सुनेंगे कुमार लाल मिश्र का तबला वादन। राग होंगे 3 और रूपक। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी 14 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 9:05 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे तान्या शर्मा द्वारा गाए भजन। तबले पर होंगे मधुर सक्सेना, हारमोनियम पर संगत देंगे रुपेश लाल और पंडित महेश मलिक होंगे वायलिन पर। सुबह 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। कार्यक्रम महिला संसार आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसके अंतर्गत सुनिए लक्ष्मी शंकर का ख्याल गायन, राग होगा भटियार। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00 और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो

0: प्रस्तुति का 13वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:35 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से होगा। रेडियो नाटक आलिफ लैला की कहानी सुनिए रात्रि 10 बजे। इसके लेखक हैं डॉक्टर हामिद हुसैन और प्रस्तुति होगी शाकिर अली की। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे राग मारू बिहाग पर लक्ष्मी शंकर का ख्याल गायन। श्रोताओं, ये थे कल यानी 14 अक्टूबर 2026 बुधवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 7 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और PPE किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किया संबोधित, कहा देश में स्टार्टअप की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर में मां शारदा के किए दर्शन, कहा महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा मां शारदा धाम। और कुछ ही देर में खंडवा में अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, डेटा और नवाचार का इस्तेमाल लोगों को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी डिजिटल क्षमता और तकनीक के जरिए देश के साथ दुनिया के लिए भी नए अवसर तैयार कर रहा है। श्री मोदी ने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है और करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से हैं।
4: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी में 2026 और 2027

0: 27 में 7% की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और बढ़ती संभावनाओं का संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा देने से विकास के नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में लाडी बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की करीब 1,25,00,000 पात्र महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये प्रति महिला के हिसाब से राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिले में 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे, जिनकी कुल लागत करीब 140 करोड़ रुपये है। इनमें 68 कार्यों का लोकार्पण और 68 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शारदीय नवरात्रि पर मैहर स्थित मां शारदा धाम पहुंचकर दर्शन पूजन और आरती की। उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हवन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मैहर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि मां शारदा धाम में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकास कार्य किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि
2: मैहर को जिला बनाया गया है और जिले बनने से बहुत सारे विकास के द्वार खुल जाते हैं। शारदा माई लोक के निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने रखी है और आने वाले दिनों में इसका उसी प्रकार से विकास होगा जैसे बाबा महाकाल लोक का हुआ है और अन्य धार्मिक स्थलों के।
0: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मंत्री राधा सिंह ने आज भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके निराकरण के निर्देश दिए। जिन मामलों में विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता थी उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया। अब से कुछ ही देर में खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित इस 2 दिवसीय समारोह में उन्हें उनके अभिनय क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले और उनके साथी गीत संगीत की प्रस्तुति भी देंगे। राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित सेवा सदन कार्यालय में आज राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने नवनियुक्त चिकित्सकों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों को समय पर परामर्श, जांच और उचित उपचार करने के लिए कहा। बैठक में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध संसाधनों, दवाइयों और अन्य समस्याओं की जानकारी दी। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पहली बार मतदान करने वाले युवा और अन्य पात्र नागरिक फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। आवेदन के साथ अलग से घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर फिलहाल जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर को ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 9 जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि आज और कल मौसम साफ रहने का अनुमान है। भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में दिन में गर्मी और रात में ठंडक बनी रहेगी। इस बार प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ जिले के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस के अवसर देने के लिए कल जिला स्तरीय युवा संगम का आयोजन किया जाएगा। गुना में जिला स्तरीय जनसुनवाई में रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जरूरतमंद हितग्राहियों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। झाबुआ में स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया गया जिसमें कलेक्टर ने हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र बांटे। बैतूल में विकासखंड आंबला की ग्राम पंचायत अंधारिया में कृषि विभाग ने किसानों को कम बारिश की स्थिति में फसल चयन और सूखा प्रबंधन की जानकारी दी। आगरमालवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, दौड़, लॉन्ग जंप, शतरंज और रस्सी कूद प्रतियोगिताएं हुई। नीमच में दीपावली पर अस्थायी रूप से पटाखों के फुटकर विक्रय के नवीन लाइसेंस और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए इच्छुक आवेदक 15 से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीहोर में 28 अक्टूबर को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय बाल अधिकार शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास जिले के कन्नौद विकासखंड के ग्राम कुसमानिया में 16 अक्टूबर को

मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा और अशोकनगर में जिला न्यायालय परिसर में आज आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किया संबोधित, कहा देश में स्टार्टअप की संख्या 2.5 लाख से है ज्यादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर में मां शारदा के किए दर्शन, कहा महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा मां शारदा धाम। और कुछ ही देर में खंडवा में अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम के सभी हमारे सुनबे वाले किसान भैया हरों को, दद्दा दाई हरों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों को खूब स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें अपनी रानी बहन की दो यहाँ जोर के राम राम, जय सीताराम भैया हरों। उम्मीद करत है कि आप सभी जने खूब अच्छे हुई हैं, स्वस्थ हुई हैं। भैया हरों देखो मैया के दिन चल रहे हैं, घर घर में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं, पंडाल सजे हैं, मैया विराजी हैं और भक्ति भावना में पूरा दिन निकल रहा है। पता ही नहीं चले कि कब दिन भाव और कब संध्या हो गई। हवन पूजन की सुगंध से घर आंगन महक रहे हैं, सकारे की आरती और जवारे चढ़त देखत भय कितो अच्छो लग रहो है। तो सबसे पहले मैया के चरणों में शीश नवाए और बोले जय माता दी। लेकिन भैया हरों त्योहारन की खुशी के संगे संगे अगर आप व्रत रख रहे हैं भैया हरों तो अपने सेहत के हिसाब से फलाहार जरूर करें, पानी की कमी नहीं होने दें और शरीर की अगर कमजोरी महसूस होते भैया तो ओको पूरो पूरो ध्यान सोई धरने हैं। अब भैया हरों देखो किसानी खेती के जो काम है वे अब बदल रहे हैं, जमाना भी धीरे धीरे बदल रहा है, खेती में भी नई नई तकनीक आ गई है। अब मोबाइल फोन की बात करें तो देखो मोबाइल फोन किसानों के लाने जानकारी पावे को एक बहुत ही

0: बढ़िया साधन भी बन गए है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपन के मिलत है किसान सारथी ऐप। तो किसान भैया हरो, किसान सारथी ऐप है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल पहल से जुड़ो एक प्लेटफॉर्म है। जहाँ पहल को मकसद यही है कि किसानन तक खेती किसानी की सही और उपयोगी जानकारी पहुंच सके। तो भैया हरो, फसल में बीमारी लगे, कीड़ा लगे तो कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेवे में मदद मिल सकत है अपन के। मौसम की जानकारी, खेती की नई तकनीक की जानकारी, फसल उत्पादन से जुड़ी जानकारी, बुआई से लेके कटाई तक उन्नत खेती और कृषि संबंधी सलाह की जानकारी भी अपन के किसान सारथी ऐप से मिल सकते है। अच्छी बात जा है भैया कि हिंदी सहित एमए और अनेक स्थानीय भाषाओं में भी कृषि की जानकारी उपलब्ध होते है। तो भैया हरो, अगर आपके जरा भी लगा थे कि आपकी कोई सलाह की जरूरत है तो आप अपने किसान सारथी ऐप की मदद ले सकत हैं। एक और बात भैया हरो, आप और उनसे साझा करने हती कि हमारे किसान भैया दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लाने, देश के लाने अन्न उपजाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनके लाने भी तो एक योजना होने चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। भैया हरो, रेहड़ी पटरी लगावे वाले जो हमारे भैया हरे हैं, रिक्शा चलावे वाले हैं, निर्माण करवे वाले मजदूर हैं, घरेलू कामकाज करवे वाले असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उनके लाने यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। जय योजना के अनुसार भैया जो श्रमिक है हमारे किसान भैया हरे, वे अपनी उम्र के हिसाब से हर महीना एक निर्धारित अंशदान जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार भी निर्धारित नियमों के अनुसार बराबर को अंशदान जमा करत है। योजना की प्रमुख बात क्या है भैया कि पात्रता 18 से 40 वर्ष तक के बीच की है और मासिक आय 15,000 रुपया तक इनमें होने चाहिए। तो भैया हरो, आप और जरूर बिल्कुल जय योजना को लाभ उठाइयो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। किसान भैया हरो, कई बार अगली फसल की तैयारी जल्दी करवे के चक्कर में किसान भैया हरे खेत में पराली जला देते हैं भैया, जो तरीका बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। फसल अवशेषों को सही प्रबंधन कैसे हो जैया महत्वपूर्ण विषय पर सुनत है अपन जब भेंट वार्ता वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप जाट से।
1: भाइयों बहनों, फसलों की बुवाई के बाद हमारे खेतों में हमें पराली या फसलों के अवशेष मिलते हैं। यदि हम इसका सही प्रबंधन करते हैं तो ये हमारी अतिरिक्त आय बढ़ाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे कई कृषक भाई बहन इन पराली को या इन फसल अवशेषों को जलाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हमारी मृदा को हानि होती है, तो हम इस हानि लेने की अपेक्षा लाभ क्यों ना लें। तो आइए चर्चा करते हैं पराली और फसल अवशेष प्रबंधन पर। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर दिलीप जाट जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। सर, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। सर, हम चर्चा कर रहे हैं पराली या फसल अवशेष प्रबंधन पर, तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं?
2: पराली एवं फसल अवशेष प्रबंधन दो, वैसे देखा जाए तो ये खेतों से प्राप्त होने वाले ऐसे अवशेष हैं जिनको सामान्यतः किसान जो है उसको अनुपयोगी समझता है
1: जी।
2: परंतु इनका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो उससे अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है, मिट्टी की सेहत भी सुधारी जा सकती है। साथ ही साथ अगर पराली को आपने मिट्टी में ही अगर मिक्स कर दिया, उसी के साथ मिला दिया तो इसके माध्यम से आप अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपकी जल का जो क्षमता होती है मिट्टी की, वो जल धारण क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पराली या फसल अवशेष कहा जाए तो ये खेतों से फसल से प्राप्त होने वाला अवशेष ही है जिसका हम सही माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारा जो दोनों जो शब्द है उन्हीं अवशेषों के लिए उपयोग किया गया है, परंतु ये एक ही मकसद है हमारा कि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, किसान इसको खेत में ना जलाए, इसका उचित प्रबंधन करे जिससे कि उसकी लागत कम हो, उत्पादन लागत कम हो तथा इससे अधिक आय भी प्राप्त की जा सके।
1: सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हमें इसे जलाना नहीं है, लेकिन हमारे किसान फिर भी इसे जलाते हैं। क्यों जलाते हैं सर?
2: इसको जलाने का एक प्रमुख कारण ये है कि एक तो हमें फसल की कटाई के बाद जो अगले फसल की बुआई करनी है उसके लिए एक सीमित समय मिलता है, उस कम समय में ही उसे पुनः किसान भाइयों को अपना खेत तैयार करना है। तो सबसे सामान्य तरीका किसान भाइयों के लिए यही समझ में आता है कि वो फसल को जला के अगली फसल को बुआई के लिए खेत को तैयार करें। दूसरा, इन पराली या फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जो कृषि यंत्र है उनकी लागत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनकी लागत अधिक होगी तो किसान भाई किसी ऐसे समाधान की ओर जाएंगे जो कम लागत में किसान भाइयों को मिल जाए। किसान भाइयों को कई ऐसे यंत्र है जो कम लागत में भी उपलब्ध है, उसकी जानकारी नहीं है, खासकर हमारे छोटे किसान भाई या सीमांत किसान हैं, उनके लिए भी ये यंत्र उनको अधिक लागत के लगते हैं, तो उसके लिए भी सरकार की कई योजनाएं हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर है, उनके माध्यम से छोटे किसान भी इन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो खासकर देखा जाए तो इन सब जानकारी का अभाव होना, इसकी वजह से ही किसान भाई जो है अपने इस पराली को खेतों में जला

0: सर ये बताइए कि पराली जलाने के स्थान पर हमारे भाई बहन कौन कौन से वैज्ञानिक विकल्प अपना सकते हैं जिससे कि उन्हें लाभ हो।
1: एक तो वैज्ञानिक तरीका ये हुआ कि आप उसे मिट्टी में सही तरीके से मिला दें। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आप यंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहें तो कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, जैसे पूसा नई दिल्ली ने एक विकसित किया है, उसका अगर डिकम्पोजर का अपन उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग करके भी उसको कम समय में, उसमें 15 से 20 दिन की जो अवधि मिलती है किसान भाइयों को एक फसल से दूसरी फसल के बीच में, तो इस अवधि में डिकम्पोजर का छिड़काव अगर करते हैं तो वो भी मिट्टी में सामान्य तरीके से विघटित हो जाते हैं। तो ये दो तरीके ऐसे हो गए, या तो उनको यांत्रिक तरीके से मिट्टी में मिला दे या डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर लें, इनका इस्तेमाल करके वो इनको वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सर, चर्चा के दौरान आपने कहा कि हम यंत्रों का उपयोग करके भी ये पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, तो
1: जी
0: सर कौन कौन से यंत्र हैं जिनका उपयोग हमारे कृषक भाई बहन करें?
1: कई प्रकार के यंत्र होते हैं, जैसे हमें बुआई के समय अगर पराली का प्रबंधन करना है,
0: जी
1: जैसे पिछली फसल की हमारी कटाई हुई, हम अगर किसान भाई चाहें कि उसी पराली के साथ वो अगली फसल की बुआई करें तो उसके लिए जीरो टिल ड्रिल एक मशीन होती है, परंतु इसके लिए कुछ मात्रा पराली की या फसल अवशेष की जो है उसको हमें खेतों से हटाना होता है, तो हटाने के लिए हम बेलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रा रिपर भी एक यंत्र होता है जिससे हटा के हम भूसा बना सकते हैं। साथ ही साथ ये बुआई के समय अगर प्रबंधन करना है तो हैप्पी सीडर एक यंत्र होता है जिसमें आपका फसल अवशेष खेत में ही रहेगा, उसी अवस्था में आप नई फसल की बुआई कर सकते हैं।
0: अच्छा, ये तो एक
1: तो
0: अच्छी बात है सर।
1: ये एक बड़ा अच्छा यंत्र है, इसमें खासकर अगर आपका पुआल काफ़ी अधिक मात्रा में है, जैसे धान का सामान्यतः पुआल अधिक होता
0: अधिक
1: है
0: होता है जी।
1: गेहूं के पुआल की तुलना में, तो इसके लिए हैप्पी सीडर एक उपयुक्त यंत्र है। तो बुआई के लिए प्रबंधन अगर करना हो तो जीरो टिल ड्रिल हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फसल कटाई के बाद आप प्रबंधन करना चाहें तो उसके लिए बेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपका फसल अवशेष है उसको बेल बना के खेत से बाहर कर सकते हैं। अगर आपका जो पुआल है वो जानवरों के खाने योग्य है तो उसका आप भूसा भी बना सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उन्नत यंत्र है जिनका इस्तेमाल अगर किसान भाई करेंगे तो पुआल का प्रबंधन बुआई के समय भी कर सकते हैं, फसल की कटाई के बाद भी कर सकते हैं। और भी कई ऐसे यंत्र है जिनका अगर हम जब हम जैसे गेहूं की खासकर कटाई के बाद बहुत सारे दाने खेत में ही रह जाते हैं, तो जब हम एक्स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भूसा तो बनाता है, साथ ही साथ जो दाने खेत में रह गए हैं उसको पुनः दाने में बदल के भूसे के साथ साथ कुछ अनाज की भी हमें प्राप्ति होती है।
0: अरे
1: तो
0: वाह।
1: किसान भाई चाहे तो ये भी एक उनका पुनः एक इनकम का स्रोत हो सकता है। तो इन तरीकों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही किसान भाई अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, एक स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम SMS ये हमने
1: जी
0: सुना है, ये क्या है?
1: स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे प्रातः ये देखा गया है कि कई बार किसान भाई जब कंबाइन हार्वेस्टर से जब खेतों की कटाई होती है तो कटाई होने के बाद सारा जो पुआल या जितना भी फसल है उसे से वो एक कतारी में मशीन के पीछे गिरता रहता है, तो ये इतना बड़ा ढेर लग जाता है खेतों के बीच में कि अगली फसल की बुआई करना संभव नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो सबसे किसान भाई इसी ढेर को जला देते हैं, वो बड़े जल्दी आग भी पकड़ लेता है। तो सरकार ने इस प्रकार के प्रबंधन किए कि मशीन में जहाँ से पीछे फसल के अवशेष गिरते हैं वहाँ पर एक SMS सिस्टम लगाया जाता है जिसके माध्यम से जितना भी पुआल उसके ऊपर आके गिरता है वो समान रूप से खेत में बिखर जाता है। तो
0: अच्छा।
1: इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो एक कतारी में पूरा पुआल आके गिर रहा था या फसल अवशेष गिर रहे थे अब वो समान रूप से खेत में बिखर चुका है, तो उसका बाद में प्रबंधन करना बड़ा आसान होता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: हाँ।
1: ये जो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जो SMS एक सिस्टम है, इसको कंबाइन हार्वेस्टर के साथ खासकर जितनी भी सब्सिडी की स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके माध्यम से मशीनें खरीदते हैं उसमें कंपलसरी किया हुआ है, सभी किसान भाई जो भी हार्वेस्टर खरीदेंगे उसमें SMS सिस्टम रहेगा, तो ये इसका एक फायदा है।
0: बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइए, बेलर का उपयोग कैसे कर सकते हैं?
1: बेलर का उपयोग भी सामान्यतः धान की फसल के बाद जब पुआल काफ़ी अधिक होता है खेतों में, तो बेलर एक यंत्र होता है जो सारे पुआल को इकट्ठा करके उसको उच्च दबाव पे दबाकर एक आयताकार बेल बना देता है। तो सामान्यतः होता यह है कि जितना भी पुआल, पुआल के साथ सबसे बड़ी समस्या है उसके संग्रहण की, तो उसका संग्रहण को कम करने के लिए जितने भी पुआल को वो कंप्रेस करता है दबाता है तो 10 हिस्से को एक हिस्से में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे फायदा क्या होगा, जो आपने बेल बना लिया तो आप संग्रहण के लिए आपको उतनी ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेलर जो है ये खेत में से पुआल को उठा के सीधा बेल बना देता है, बेल बनाने के बाद उस बेल का उपयोग हम चाहें तो पूरे वर्ष भर अलग अलग कामों में कर सकते हैं। कई बार पुआल का उपयोग पैकेजिंग वगैरह में होता है, कई बार आपने फलों को देखा होगा कि जब पैकेजिंग की जाती है तो वहाँ पे इसी पुआल का उपयोग होता है। इसी बेल का उपयोग करके बाद में पशुओं को चारा में भी परिवर्तित करके खिलाया जा सकता है,
0: जी
1: तो इसके संग्रहण में बड़ी आसानी हो जाती है, तो यहाँ पे बेलर की उपयोगिता होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।

0: सर अभी जैसे हमने चर्चा की कि भूसा बनाते हैं, तो
1: जी
0: सर फसल अवशेषों से भूसा कैसे बनाया जा सकता है और इसके लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है?
1: फसल अवशेष से खेत में ही भूसा बनाना, एक तो तरीका होता है कि आप सारा फसल अवशेष को इकट्ठा करके खलिहान में ला के वहाँ पे भूसा बनाया जाए, परंतु उससे भी आसान होगा कि हमारे पास ऐसे यंत्र हो कि हम खेत में ही भूसा बना सकें। तो इसके लिए स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर से चलने वाला एक यंत्र होता है, ट्रैक्टर को खेतों में आपको चलाना है, स्ट्रा रीपर उसके साथ साथ चलता है, उसके पीछे एक ट्रेलर भी होगा, तो सारा जो भी अवशेष है उसको भूसे में कन्वर्ट करके वो ट्रेलर में संग्रहित कर देता है,
0: जी
1: और साथ ही साथ जितना अनाज अंदर छूट गया खेत में, ये स्ट्रा रीपर मशीन जो है उसको भी कन्वर्ट करके पुनः अनाज की भी प्राप्ति हो जाती है।
0: सर, अब ऐसे यंत्र के बारे में बताइए जो फसल अवशेषों के मध्य बुवाई करना संभव कर दे।
1: जी ये तरीका सबसे अच्छा अगर होगा, अगर हम फसल अवशेषों को खेतों से बाहर ना निकालें और उसी में खड़ी फसल में जो पुराने अवशेष है उसी में बुआई कर सकें, तो इसके लिए हम जीरो टिल ड्रिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हम हैप्पी सीडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
0: जी
1: इसके लिए सुपर सीडर भी यंत्र है जिन पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडी भी दी जा रही है, तो इस प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल
0: कर
1: कर सकते
0: सकते हैं
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: सर, एक मल्चर यंत्र और फसल अवशेष डीकम्पोजर,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएं।
1: जो मल्चर, कई बार जैसे मक्का वगैरह के डंठल सामान्यतः देखने में काफ़ी बड़े होते हैं, उनको खेतों से बाहर करना भी इतना आसान नहीं होता है,
0: जी
1: तो मल्चर एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से इन डंठल को हम खेतों में ही मिक्स करके बारीक करके खेतों में समान रूप से बिखेर देते हैं, तो इससे हम धान के पुआल का भी प्रबंधन कर सकते हैं, मल्चर के माध्यम से हम वीट का भी हम कर सकते हैं, गेहूं के भी पुआल का, और ख़ास करके मक्का के पुआल का हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो खेत में खड़ी फसल की अवस्था में भुट्टे वगैरह तोड़ने के बाद जो बचे हुए पुआल है उसको मिक्स करने के लिए मल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। डीकम्पोजर जो होता है एक रसायन होता है जिसका हम सामान्यतः पानी में मिला करके उसको खेत में किसी भी स्प्रेयर के माध्यम से छिड़काव कर देते हैं, जिससे 15 से 20 दिन में हमारा जितना भी पुआल है वो विघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है,
0: मिल
1: जिससे
0: जाता
1: कि
0: है
1: अगली फसल सामान्य रूप से किसान उसमें खेती कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। सर, अब एक और बात, फसल प्रबंधन में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रशासन की भूमिका क्या रहती है?
1: सारे पुआल का प्रबंधन करना है, फसल अवशेषों का प्रबंधन करना है, तो इसके लिए किसान की भूमिका ये होगी कि वो इसको जलाने से बचे। वैज्ञानिकों की यहाँ पर भूमिका अगर देखी जाए तो उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित करने की आवश्यकता है या ऐसे यंत्रों को और विकसित करने की आवश्यकता है जो कि कम लागत पर किसानों के लिए बड़ी आसानी से फसल अवशेषों को प्रबंधित कर सके।
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे प्रशासन की भूमिका ये होगी कि वो इन यंत्रों को कम कीमत पर या सब्सिडी के माध्यम से किसानों तक उपलब्ध कराए, किसानों को इनके बारे में अवगत करवाए, इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करें जिसके माध्यम से किसान इन यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करें। तो इस प्रकार से इन तीनों घटकों की अपनी अपनी भूमिका है फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप कार्यक्रम में आए और विषय से संबंधित सभी जानकारी हमें विस्तृत रूप से दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: कितनों ने सुई जानकारी दी डॉक्टर दिलीप जाट ने। भैया और अपन सभी मिलके सुन रहे हैं अपनो आकाशवाणी केंद्र भोपाल से किसान वाणी कार्यक्रम, और अब जरा तनक मन में भक्ति की भावना सुई ललक ले रही है, तो भैया हरो अपन भी लगाते हैं मैया के चरणों में ध्यान और सुनत है जब भक्तिमय प्रस्तुति उमा सक्सेना की।

0: वाह भैया, भक्ति के गीत सुन के तो मन प्रसन्न होगा माता रानी। हम सब के घर परिवार में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखे जैया कामना करत है। किसान भैया हरो, अपन सब मिलके सुन रहे हैं अपनो पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। भैया हरो बड़े जतन से खून पसीना एक करके फसल उगाते हैं। कटाई के बाद जब अनाज घर आते तो चेहरे पे अलग ही मुस्कान होते है। पर सोचो अगर सही देखभाल ना होए, नमी, घुन, चूहा, कीड़ा लग जाए तो सबरो अनाज खराब हो जाते है, तो कितना नुकसान होते है। अपनी गाढ़ी कमाई होते है, मेहनत कोई और खा जात है, तो अनाज के सालों साल सुरक्षित कैसे रखें? तो सुनत है जलघु वार्ता, वैज्ञानिक विधि से अनाज भंडारण कैसे करें, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से।
1: किसान भाइयों नमस्कार। वैज्ञानिक विधि से फसलों का भंडारण, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं। फसल की कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित भंडारण बहुत जरूरी है। यदि अनाज का सही तरीके से भंडारण नहीं किया जाए तो उसमें कीड़े और रोगों का प्रकोप लग जाता है और नमी के कारण अनाज खराब हो सकता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और फसलों का भंडारण यदि वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो जो है अनाज सुरक्षित रखता है और जो 15-20% तक जो हमारा अनाज खराब होता है उससे भी हम जो है बच सकते हैं। किसान भाइयों फसल की कटाई सही समय पर करने से जो है फसलों की पैदावार अच्छी होती है। बहुत जल्दी कटाई करने से अनाज में नमी अधिक रह जाती है और देर से कटाई करने से दाने झड़ते हैं और पक्षियों के द्वारा भी नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर खेत में निरीक्षण करें, फसल पूरी पकने के पश्चात ही जो है कटाई करें। अनाज की कटाई के पश्चात जो है अच्छी तरह से साफ सफाई करें। कटाई और मड़ाई के बाद अनाज में मिट्टी, कंकड़, भूसा, टूटे हुए दाने और अन्य कचरा जो है आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ करें। साफ अनाज का भंडारण करने से उसकी गुणवत्ता बनी रहती है और भंडारित अनाज में लगने वाले कीटों का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो इस बात का बहुत बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना आवश्यक है। अनाज को सुखाने की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज होती है कि अगर अनाज में जो नमी है वो 10-12% से ज्यादा नमी होगी तो उससे जो है भंडारित अनाज में कीड़ों का तो प्रकोप होगा ही, साथ में जो है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए आवश्यक है किसान भाई साफ तिरपाल या पक्के फर्श पर पतली परत में जो है अनाज को

0: लाकर सुखाएं और समय समय पर पलटते रहें, जिससे कि अनाज में नमी जो है 10 से 12% से ज़्यादा ना हो। इसके लिए किसान भाइयों जो है दाने को मुंह से कट करें, अगर कट की आवाज़ आती है तो जो है दाना जो है भंडारण के लिए उपयुक्त तो रहता है। इसके महत्वपूर्ण जो है बात आती है कि भंडारण गृह की सफाई भी बहुत आवश्यक है। भंडारण करने से पहले, अनाज रखने के से पहले गोदामों, कमरे, भंडार पात्र की अच्छी तरह से सफाई करें। उसमें यदि पुराना अनाज, कचड़ा या जो है छेद हैं तो उनको, छेदों को भर लें, क्योंकि छेद के अंदर जो है जो कीड़े होते हैं जो कि भंडारित अनाज में लगने की समस्या रहती है, तो उसे सुखा लें, साफ कर लें। वो दीवारों पर पानी टपकने की समस्या ना हो, यदि नमी है तो नमी को भी सूखने के उपरांत ही उसमें अनाज का प्रयोग करें। इसके साथ साथ किसान भाइयों उचित भंडारण पात्रों का उपयोग करने से अनाज सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो भंडार पात्र हैं या जिन बोरियों में अनाज को भरा जा रहा है वो बोरियां पूरी तरीके से सूखी होना चाहिए और उनको जो है जमीन से लगभग 1 फीट ऊंचाई पर रखना चाहिए। साथ में जो भंडार पात्र को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए ताकि जो है हवा का आगमन ना हो, और हवा के आगमन और नमी होने से कीड़े बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो है एक और महत्वपूर्ण हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि बोरियों को सीधे जमीन पर नहीं रखें, उन्हें लकड़ी के पट्टों या पेलेट पर रखें, साथ में दीवार से लगभग 1 फीट दूरी पर रखें, जिससे कि नमी बची रहेगी और आसानी से हमारा अनाज सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो है भंडार गृह में कीड़ों और चूहों का भी जो है काफी प्रकोप होता है, जिससे फसल जो है काफी प्रभावित होती है। तो भंडारित अनाज में घुन, सुरसुरी और अन्य कीट जो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में भंडार गृह में यदि चूहों का प्रकोप होता जाता है तो चूहे भी दाने को कुतर देते हैं और इससे जो है दाने की गुणवत्ता और उसका अच्छा बाजार भाव भी नहीं मिलता और वह खाने की योग्य भी नहीं रहता। इसलिए जो है जब भंडारण करते समय इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसान भाइयों भंडारित अनाज की नियमित रूप से जो है जांच करते रहें, अनाज में नमी, कीट, फफूंद अगर जो है का प्रकोप दिखाई देता है तो तुरंत जो है भंडारित अनाज को जो है दूसरे भंडार गृह में रखें, ताकि जो है जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचकर आपका अनाज सुरक्षित रहे, की गुणवत्ता बनी रहे, आने वाले समय में उसकी पैदावार और बाजार में बेचने पर उसका अच्छा मूल मिल सके। आज की चर्चा में बस इतना ही।
1: भैया हरो, आज की लघु वार्ता में बहुत ही अच्छी जानकारी दी अपन के वैज्ञानिक विधि से अनाज भंडारण के बारे में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने। चलत चलत कृषि सलाह आप और उनके दे दें। मौसम में बदलाव के चलत भाई अपनी खरीफ फसलों को नियमित निरीक्षण करत रहें, पत्तियों पे धब्बे, पौधों को मुरझानों और कीटों को प्रकोप दिखाई दे तो जरूरत पड़वे पे कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुशंसित कीटनाशक या रोगनाशक को ही इस्तेमाल करें। जिन किसान भैया हरों की फसल पक चुकी है वे मौसम और फसल की स्थिति के अनुसार अपनी कटाई करें। मंडी के भाव भी सोई आपके बता दें तो भैया गेहूं रहो 2400 से 3250 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन रहो 4200 से 4850 रुपया प्रति क्विंटल, चना 5100 से 5600 रुपया प्रति क्विंटल तक देखोगा, और मक्का की अगर बात करें भैया हरो तो 2100 से 2450 रुपया प्रति क्विंटल आवक देखी है। मंडी में भाव, उपज की गुणवत्ता, नमी, किस्म और बाजार की मांग के अनुसार ऊपर नीचे हो सकत है। पहले नजदीकी कृषि उपज मंडी से ताजा भाव की जानकारी जरूर ले लेने, है ना। तो भैया हरो अब हो रही है चलवे की बिरिया, फिर मिल है किसान बाड़ी के अगले कार्यक्रम में नई जानकारी और नए विषय के संगे। तो देव अनुमति स्वीकार करें अपनी रानी बहन की। राम राम, जय सीताराम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसानवाणी खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम
1: किसानवाणी। किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के। 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है। और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
2: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्टलाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्टलाइंस है वहां पर भी सफल रहा है?
3: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास, एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
2: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर,

0: कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
1: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले दो दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो, तो ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
2: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे, दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है तो पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में 3 जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में, तो उस हिसाब से टर्न ओवर पर शिप अगर देखे तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में, एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पर

0: पोर्ट है उड़ीसा में और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
0: तीन पोर्ट टॉप 13 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है
1: जी
2: हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं
1: जी
2: इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो
1: जी
2: इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इस सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है?
0: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से जब ये दुनिया में जब इनका हूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज
1: जी
0: और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे, और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे, सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ, ये सारा जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है, आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है, और
1: जी
0: हमारे जहाज कंटिन्यूसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन

0: हुए और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं
1: जी
0: इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है, दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं? ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का।
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है, बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है, तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो, या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में, और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
2: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका, और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से, गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर, वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है, जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज वन की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके, क्योंकि देखिए शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और

0: चार घंटे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल खासतौर पर खाद्य पदार्थ जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
1: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ। कैसे देखते हैं आप इसको, ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
1: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो सुएज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक
1: जी,
2: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEUs से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEUs का होने का उद्देश्य है इस बार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर के डी जोशी डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं, एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है?
0: देखिए, ये जो परियोजना है सागर काठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं, इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की

0: आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से हजार साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक
1: है। कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
0: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्ट लेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के, जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज़्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी ज़रूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल। कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
2: जी सोलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक, आप कह सकते हैं, एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा, लोगों के लिए वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
0: मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित

0: इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग की, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं। तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है, उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं, 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047 उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
2: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
2: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIB के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखें हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा तक। तो अभी आप देख रहे हैं कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है, और ये सारी चीजें इन 3 प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल,
2: सागर खेड़ू

0: जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो
1: जी
0: एक मॉडल था। उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में।
1: जी
0: और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें
1: जी
0: महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है।
1: जी
0: गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से।
1: जी
0: तो आप
1: जी
0: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे, पूरी देश की पूरी जो लैंड मास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की, सब जगह कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है मुझे।
1: जी बिल्कुल। कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
3: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म अवतार का ये गीत। इसे गाया है आशा भोसले, महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल और साथियों ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर ना दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के

0: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव

0: जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
1: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
2: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
3: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
1: 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPI ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के

इनकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात में कलीदी शराकत दारी को मुस्तहकम करने से इत्तफाक किया है। मरकजी वजीर एल मुरुगन ने वुजरा की काउंसिल और राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने एक बार फिर कहा है कि लद्दाख मुल्क का एक अटूट हिस्सा है और चीन की जानिब से किसी भी किस्म की तरदीद इस हकीकत को नहीं बदल सकती। फर्द से मर्चेंट को की जाने वाली मुंतखब ट्रांजेक्शन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट शरह पर दिवाली के बाद अमल किया जाएगा। घरेलू मार्केटों में 1.5% का इजाफा हुआ। सेंसेक्स 73,034 पर बंद हुआ। और पैरागोए में आनंद कुमार वेलकुमार ने वर्ल्ड स्केट गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने बाहमी ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार कायम करने और कलीदी शराकत दारी के तमाम अहम शोबों में ठोस नताइज के लिए काम करने से इत्तफाक किया है। इन शोबों में तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने आज टेलीफोन पर गर्मजोश और कारामद मुजाकरात किए। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत और कनाडा एक मजीद मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की जानिब मिलकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी के दरमियान ताल्लुकात को उम्दा तरीन करार देते हुए भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर कूटर ने आज कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे जितने इन दिनों हैं। नई दिल्ली में कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद की आमद से कबल एक खबर रसा एजेंसी से खिताब करते हुए कूटर ने दोनों मुल्कों की क्यादत के दरमियान हालिया मुलाकातों के बारे में इजहार ख्याल किया, जिसमें वजीर खारजा एस जयशंकर और मोहतरमा अनीता आनंद के दरमियान मीटिंग्स शामिल हैं। उन्होंने कनाडा के वजीर तिजारत मनिंदर सिद्धू के जल्द होने वाले दौरे के बारे में भी बातचीत की। कूटर ने कहा कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात प्राइवेट सेक्टर में भी पेशरफ्त कर रहे हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे की दरियाफ्त कर रहे हैं और उनका मकसद 2030 तक तिजारत को दुगना करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज ने अपनी हुक्मरानी के अंदाज नज़र और कामकाज के कल्चर में बाइख्तियार बनाने का इख्तियार देने के उसूल को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत की इक्तसादी तरक्की आलमगीर गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पेशरफ की बुनियादें इज्तिमाई तरक्की और मुश्तरक मौाक़े में पेवस्त हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुस्तकिल कोशिश रही है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि भारत की सलाहियतें दूसरे मुल्कों के लिए भी मौाक़े के नए दरवाजे खोलें।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: वजीर आजम मोदी ने ब्लूमबर्ग को 30 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत ब्लूमबर्ग के भारत में अपनी मौजूदगी को तौसी देने और भारत की मईशत, मार्केटों और आवाम के साथ अपनी वाबस्तगी को मजीद बढ़ाने के मंसूबे का खैर मकदम करता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत आने वाले मरकजी बजट के सिलसिले में सलाह मशवरे

उर्दू कार्यक्रम कहकशां अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा कुछ ही देर बाद।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत फिल्म दिल तेरा दीवाना से। शब्द रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, जिसकी शब्द रचना है राजेंद्र कृष्णा की, मदन मोहन ने धुन बनाई, किशोर कुमार की आवाज़ और फिल्म का नाम है मनमौजी।

तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। श्रोताओं, तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों ने। गीत को लिखा शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म श्री 420 से।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनते हैं, फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म पारसमणि से। असद भोपाली के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अगला गीत हम सुनते हैं, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शेवान रिजवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और ये गीत है फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं कुमार लाल मिश्र का तबला वादन। आइए सुनते हैं पहला राग, 3 ताल।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसके अंतर्गत अभी आपने सुना कुमार लाल मिश्र का तबला वादन, राग था तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का तबला वादन ताल रूपक पर।

0: श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों

0: नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित संकटों का सामना करने में सक्षम विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्य